ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 वैशाख मास की 18वीं तिथि। तदनुसार 8 मई 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक

0: रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी उदयपुर सवेरे के 6:05। लीजिए आप सुनिए वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को रागिनी का नमस्कार। आइए करते हैं प्रभु का सुमिरन कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। इसीलिए हमेशा मित्रवत व्यवहार कीजिए।

धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। हर स्थिति में प्रभु का सुमिरन करते रहिए, हर बाधा पार हो जाएगी।

वंदना अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:35 लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण, यानी कि आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम।

अब से थोड़ी देर में यानी कि 6:40 पर श्रीरामचरितमानस कहानी की 72वीं कड़ी आप सुनेंगे। 6:50 पर खेती में आज मई माह के कृषि कार्य और 7 सदाबहार नगमे आप सुनेंगे और 7:45 पर होगा गांधी दर्शन।

सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे नमस्कार उदयपुर, जिसमें आज होगी दिन की शुरुआत स्थानीय सूचनाओं पर और विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ स्मार्ट जीवन में होगी फिटनेस ट्रैकर्स और हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप के बारे में बात, इस सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्में और साथ ही साथ लिसनर्स कनेक्ट भी करेंगे।

सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। 10 बजे फिल्म संगीत होगा, 11 बजे घोखड़ा राजस्थानी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रहेगा और 11:30 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। 12 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम आप एक बार फिर सुनेंगे और 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम होगा। 1:45 पर विकास चर्चा होगी और दोपहर 2:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनेंगे।

शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता सुनेंगे, जिसमें युवा उद्योग जगत इस पर बातचीत होगी। शौर्य गाथा, न्यू रिलीज और साथ ही साथ आज के इतिहास पर भी बातचीत होगी। 6:05 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे केंद्र से, और 6:40 पर जिले की चिट्ठी जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे। 7 बजे खेती और घर, जिसमें होगी चौपाल रिपात, सब्जी फसल संरक्षण पर राजस्थानी गीत आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ योजना बागवानी मिशन पर आपको जानकारी देंगे। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात 9:15 पर सुगम संगीत, 9:30 पर शास्त्रीय संगीत, और 10 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा।

तो ये थे हमारे कार्यक्रम आज प्रसारित होने वाले। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 होने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। संगीत है सतीश भाटिया का।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में आज।

राम राम किसान भाइया, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम भी टेम भी और मो आयो आप जानकारी देवर वास्ते। तो आज जो जानकारी देवा आपने धान री नर्सरी कणित रो तैयार करनी है। देखो सा पाणो चाल रो उंदाड़ा रो महीनो और ई टेम पे जो आप धान री नर्सरी तैयार करी सका तो यो धान नर्सरी कणित रो तैयार करनी इनकी जानकारी दे रही हूँ। तो बात यह है कि देखो जमीन को जो चयन है वो अपने सब पहले ध्यान में देवनो है। स्वस्थ और रोग मुक्त पौधा तैयार करवारा वास्ते अपने उचित जल निकासी रो और उच्च पोषक तत्व युक्त दोमट मिट्टी और सिंचाई का स्रोत है वन के पास में जो है पौधशाला को चयन अपने करना है। और बुआई एक महीना पहली जो है अपने नर्सरी तैयार कर लेनी है और नर्सरी क्षेत्र रा महीने देखो 15 दिन का अंतराल रा महीने पानी देन जो है खरपतवार ने उगवा देवाना है और हल चलाइन जो है या पचे अवरणात्मक जो है मतलब जिन्हें कहवा नॉन सेलेक्टिव अणि में कही है खरपतवार नाशी निशान के अपने पेरावाक्ट या प्ले या पचे ग्लाइफोसेट को 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दरों अपन छिड़काव करना है खरपतवार ने नष्ट करना है। और देखो कि धान की जो मुख्य फसल है वन में खरपतवार जो है वन की में कमी आई जाएगा। नर्सरी जो को जो क्षेत्र है वन में अपना ई महीना महीने देखो अच्छी तरह जो 3-4 जो हल चलाइन अपने जुताई खेत महीने करने खाली छोड़ देवनो है और मिट्टी संबंधी जो भी रोग है वन में काफ़ी हद तक जो है वन में कमी आई जाएगा। और पचे देखो अपना के बीज को चयन, तो बीज को चयन जो आप करना तो वन में बड़ी सावधानी अपन रखनी पड़ेगा। और वन में देखो कि अणिकल आ रहा अपन आधारित जो और प्रामाणिक बीज जो है वन को प्रयोग करना चाहे और पूर्ण जमाव किस्म और शुद्धता और स्वच्छ जो है वन ने प्रामाणिकता अण में वेणी चाहे। क्यारी को प्रबंधन जो है वन की जानकारी देवा तो देखो धान री जो पौध है वह तैयार करवा वास्ते अपन 8 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां है वह बनावनी चाहे और जटा तक अपने नया पौधा जो है हरा नहीं पड़ जावे। पंछी जो है अपना वे देखो अपना नुकसान पहुंचाओ की स्थिति में है आई जावे तो वन में बचाव वास्ते अपना विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगा। और शुरू में देखो 2-3 दिन तक अंकुरित जो बीज है वना को पुलाव ढांकन अपने रखनो है। और बीज दर और बीजोपचार की बात करें तो धान की नर्सरी वास्ते अपने मध्यम आकार की प्रजातियां का लिए 40 किलोग्राम मोटा धान का लिए अपने 45 किलोग्राम और बासमती प्रजातियों का वास्ते अपने 20-25 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में वेणा चावसा। और धान का जो बीज है वन में अपने बोना का पूर्व आप जो 4 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा या पचे 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या पचे थीरम जो है बीज ने उपचारित कर लेना चाहे। और जटा तक अपना जीवाणु झुलसा या पचे जीवाणुधारी जो भी रोग है वणी की समस्या आवे तो वणी की स्थिति में अपन 25 किलोग्राम बीज ने जो 4 ग्राम स्ट्रेटोसाइक्लिन या पचे 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन ने मिलाइन जो है अपन पानी में रात भर भिगोन रखना है। और या पचे देखो अपने 24-36 घंटा तक आप ही जमा वेना चाहे। और बीच बीच में जो है अपन पानी को जो छिड़काव करते रहना चाहे जनियों कही है कि दूजा दिन तक जो है छाया में आप इस

सुखै नर्सरीमै डालबाकी स्थितिमा आइ जावा। पोषक तत्व और प्रबंधन री बात करा तो अच्छी फसल प्राप्त करवारा वास्ते संतुलित पोषक तत्व के उपयोग में नया पौधा की अच्छी बढ़वार वे स्वस्थ और ओजपूर्ण पर्याप्त पोषण मिलवा वाला जरूरी व्या करे सा। तो अणी के देखो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र रा महीने 10 क्विंटल सड़ी दिखी गोबर री खाद, 10 किलोग्राम डाई इमोमियन फास्फोरेट और 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट जुताई में पहली जो अपने मिट्टी रे महीने अच्छी तरह मिलाई देना चाहे और बुआई करनी चाहे। अणियों कही है कि 10-12 दिन के बाद में यदि पौधा को रंग हल्का पीला पड़वा जावे तो 1 सप्ताह के अंतराल में अपने 2 बार जो है 10 किलोग्राम यूरिया या पचे देखो 1000 वर्ग मीटर की दरों अपना मिट्टी रे महीने ऊपरे जो सतह पे मिले देना चाहे और पौधा की बढ़वार अच्छे वेगा आयु ये देखवाना अपने मिले सा। खरपतवार प्रबंधन री बात करना तो देखो बुवाई पहली जो है अपना 1-2 दिना के बाद में है जो है अपना पायरा जो स्पायरोन 250 ग्राम प्रति हेक्टर की दरों जो है पौधा निकालवा के पूर्व छिड़काव अपने करना चाहे। अणिक वास्ते शाकनाशिक ने रेत में 10-15 किलोग्राम जो है प्रति मीटर की दरों अपने मिलाई जो वर्ण नर्सरी की क्यारियां है वन में एक समान रूप में जो है फैला देना चाहे और हल्को पानी जो है वन में क्यारियां महीने भर देना चाहे। जेनियों कही है कि खरपतवार नाशी जो है एक समान क्यारा में फेल जावे। और देखो कि अण में और उपाय की बात करना तो देखो कि और फसल के अनुसार उपाय भी बताई मिले ईशान की। देखो अपना कपास की बात करना तो यह देखो एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और व्यावहारिक जो है अपने जगत में देखो कि अपना श्वेत स्वर्ण अण अपी के वहाँ तो अण की जो बुआई अपी करा तो वन में देखो जलवायु की बात करा तो कपास के उत्तम जमाव के वास्ते अपने न्यूनतम 16 किलोग्राम जो फसल है वर्णन देखो के बढ़वार की स्थिति में अपन 21-27 डिग्री जो है तापमान उपयुक्त फसल के वास्ते रेवे है और दिन में जो है 27-32 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहना चाहे और रात्रि में जो है ठंडक वेवा की स्थिति में रहना चाहे सा। और देखो कि मिट्टी को चयन की बात करें तो कपास के वास्ते उपयुक्त मृदा जो है वह अच्छी तरह देखो जल धारण और जल निकासी की क्षमता वाली वेणी चावे और जट सिंचाई की सुविधा की बात करें तो देखो बलुआ और बलुई दोमट मिट्टी जो है वन में देखो खेती की जा सके यह वन में बहुत ही बढ़िया रहे और उपयुक्त पीएच मान जो है 5.5-6 वेणो चावे और अण में देखो खेती रे महीने 8.5 पीएच मान जो है वह वाली मृदा मिट्टी जो है ज़्यादा बढ़िया रहे। फसल पद्धति की बात करें तो सिंचित क्षेत्र का महीने फसल चक्र जिसान की कपास सूरजमुखी कपास मूंगफली कपास बरसीम जई कपास गेहूँ और देखो उत्तर भारत क्षेत्र महीने कपास मटर कपास ज्वार और कपास गेहूँ अन्य तरह को जो है फसल चक्र को जो है वेणो चावे तो वो अणमें अच्छो पैदावार अपने देवे और यो काम बढ़िया बैठे। और अणि स्थिति देखो दक्षिण भारत में जो है अण की स्थिति अलग व्या करे और प्रजातियां भी जो है विशेष तौर अपने ध्यान में रखनी चाहे कि कई तरह की प्रजातियां आपकी काम में ले रहा हाँ तो आप ही देखो कि कपास की खेती वो चाहे पचे धान की नर्सरी वो तो अणि में अपने कई तरह को फायदों देखवाने मिले है। तो धान री नर्सरी की जो आप बात करें हाँ तो देखो भूमि को चयन वेगियो और अणि स्तरों बीज को चयन वेगियो क्यारी को प्रबंधन वेगियो बीज दर और बीजोपचार की बात वेगी पोषक तत्व को प्रबंधन वेगियो खरपतवार को प्रबंधन वेगियो तो ये सब बातें आप ध्यान रखो तो धान की नर्सरी जो है वह अच्छी तरह आप तैयार कर सका और धान की नर्सरी जो तैयार करना तो देखो कि ये सब बातें ध्यान रखना जरूरी है। और किसान भाई जो है आमतौर पर अणि तरह की बातों को ध्यान रखे भी है लेकिन फिर भी कहीं अगर आपने ध्यान नहीं रहे तो कटे कटे अपने नुकसान विवाह की आशंका रहे और जटे है अपना पैदावार जो प्रभावित विवाह की संभावना वणी दिखी रहे तो अपने पैदावार प्रभावित नहीं वे अपना उत्पादन अच्छो बैठे और अणि वास्ते कही कि धान की नर्सरी जो है तैयार करा वास्ते ये प्रमुख बातें जो है अपने ध्यान में वेणी चाहे और अणा को इस्तेमाल आप कर सका तो वो अच्छी बात है और मौसम ने ध्यान में रखते दिखे ये सब बातों ध्यान रखना जरूरी है। और जो अपना बीज को चयन है वो भी सब महत्वपूर्ण बात यहाँ करें क्योंकि बीज को चयन ही निर्भर करे कि आपने जो है धान की नर्सरी कतरी कणित रहूँ वेगा और वन को परिणाम आगे कहीं निकलेगा। और अणिस तरह देखो मिट्टी जो को चयन जो है वो सब मोटी बात यहाँ करें क्योंकि मिट्टी जो है वन में कणित रह का तत्व है और ये सब चीज़ें जो है आपने धान की नर्सरी तैयार करवा रहा बहुत बहुत ही जो है महत्वपूर्ण व्याख्या करेगा। और खरपतवार प्रबंधन जो है वो तो आप वणी स्थिति में कर सका कि यदि आपने जो है धान की नर्सरी आप तैयार करवा लग गया हाँ तो ये सब बातों को ध्यान जो अपना किसान भाई रखेगा तो अपना धान की नर्सरी जो है अच्छी तरह

तैयार कर पाएगा। तो या तो वे जानकारी धान की नर्सरी की, और उम्मीद करना कि किसान भैया यह जानकारी आप वास्ते बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो अब यह कार्यक्रम में टाइम वेगी तो चला सा, राम राम सा।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती में आज। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7 बजने को है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं टूटे खिलौने फिल्म के इस गीत से। यशुदास ने इसे गाया है और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ है ये गीत।

बरसात की एक रात फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थी और संगीतबद्ध किया हुआ था आरडी बर्मन का। और आइए खयाम का संगीत सुनते हैं, रजिया सुल्तान फिल्म, और लता मंगेशकर की है आवाज़।

चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ में साथ साथ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है स्वीकार किया मैंने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

उस श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है किनारा फिल्म से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ है और आर डी बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे किनारा फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और भूपिंदर की। इसके साथ ही सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है। लीजिए आप सुनिए गांधी दर्शन।

कांति दर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिलीप शर्मा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से संस्मरण। आज के इस अंक में गांधी जी के हाई स्कूल के संस्मरण। ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई कई दर्जा ऊपर थे और जिस भाई का ब्याह मेरे साथ हुआ वह मुझसे एक दर्जा आगे थे। विवाह के परिणाम स्वरूप हम दोनों भाइयों का एक साल बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो नतीजा इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद उन्हें स्कूल छोड़ ही देना पड़ा। वान जाने ऐसा अनिष्ट परिणाम कितने युवकों को भोगना पड़ता होगा। मेरी पढ़ाई जारी रही। हाई स्कूल में मैं बंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया। हर साल माता पिता के पास विद्यार्थी की पढ़ाई के साथ साथ चाल चलन के बारे में भी प्रमाण पत्र भेजा जाता था। उसमें कभी मेरे चाल चलन या पढ़ाई के खराब होने की शिकायत नहीं गई। दूसरे दर्जे के बाद मैंने इनाम भी पाए और पांचवें छठे दर्जे में क्रमशः 4 तथा 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इस सफलता में मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का हिस्सा ज्यादा था। ये वृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों में प्रथम आने वाले के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों के दर्जे में उस समय सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे। मेरी निजी स्मृति यह है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था लेकिन अपने चाल चलन की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। आचरण में दोष आने पर तो मुझे रुलाई ही आ जाती थी। मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो या शिक्षकों को ऐसा मालूम हो कि उन्हें मेरी पत्सरना करनी पड़े यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था पर मैं दंड का पात्र माना गया। इस बात का बड़ा दुख था। मैं खूब रोया। यह बात पहले या दूसरे दर्जे की है। दूसरा प्रसंग 7वें दर्जे का है। उस समय दोरावजी एदल जी कीमी हेडमास्टर थे। वह विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वह नियमों की पाबंदी कराते, बाकायदा काम कराते और लेते थे और पढ़ाते अच्छा थे। ऊपर के दर्जों के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। मुझे इन चीजों से अरुचि थी। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। मेरा जेम्पू स्वभाव भी एक कारण था। आज इस अरुचि में मैं अपनी गलती देखता हूँ। उस समय मेरी यह गलत धारणा थी कि कसरत का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझ आया कि विद्या अभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। व्यायाम की अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। कसरत अनिवार्य हो जाने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। पिताजी की सेवा के लिए कसरत से माफी पाने की दरख्वास्त दी पर गिमी साहब कब माफी देने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे इससे समय का कुछ पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। कसरत के लिए जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन जब गेमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर निकला। मुझसे वजह पूछी गई।

मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे सही नहीं माना और मुझ पर एक या दो आना जुर्माना हुआ। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं यह कैसे साबित करूं? कोई उपाय नहीं था, मन महसूस कर रह गया। अंत में कसरत से मैंने मुक्ति पा ली। पर तब तक पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वह मेरी उपस्थिति अपनी सेवा के लिए चाहते हैं। कसरत के बदले घूमना जारी रखने की वजह से शरीर का व्यायाम न करने की गलती के लिए तो मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूल की सजा मैं आज तक भोग रहा हूं। पता नहीं कहां से यह गलत ख्याल मेरे दिमाग में धस गया कि पढ़ाई में सुंदर लिखावट की जरूरत नहीं है, जो विलायत जाने तक बना रहा। बात को और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े हुए नवयुवकों के मोती के दानों से अक्षर देखे, तब मैं लजाया और पछताया। मैंने समझा कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी माने जाने चाहिए। उन दिनों रेखा गणित भी चौथे दर्जे से शुरू होता था, उसमें तो मैं यों ही पीछे था। अंग्रेजी में पढ़ाए जाने की वजह से मैं उसे बिल्कुल ही न समझ पाता था। रेखा गणित के अध्यापक समझाने वाले अच्छे थे, पर मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही न था। अक्सर मैं निराश हो जाता, कभी कभी सोचता कि दो दर्जे साल भर में पास करने का इरादा छोड़ दूं और तीसरे दर्जे में लौट जाऊं। पर इसमें मेरी लाज जाने के साथ ही जिस शिक्षक ने मेरी श्रमशीलता पर विश्वास करके दर्जा चढ़ाने की सिफारिश की थी, उसकी भी लाज जाती। इस डर से नीचे उतरने का विचार त्याग दिया। कोशिश करते करते जब मैं रेखा गणित की 13वीं शक्ल तक पहुंचा तो यकायक मुझे जान पड़ा कि यह तो आसान से आसान विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, उसमें कठिनाई की क्या बात है। संस्कृत मेरे लिए रेखा गणित की अपेक्षा कठिन सिद्ध हुई। रेखा गणित में कुछ रटना नहीं रहता, पर संस्कृत में तो मेरी दृष्टि से अधिक काम रटने का ही था। यह भी चौथी कक्षा से ही चली थी। छठे दर्जे में मैं हिम्मत हार गया। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे, पर आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर जी की कृतज्ञ है, क्योंकि जितनी संस्कृत उस समय मैंने पढ़ी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों में जो रस ले सकता हूं वह न ले पाता। आज का ये अंक अब यहीं तक। दिलीप शर्मा आपसे लेता है इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गांधी दर्शन, महात्मा गांधी की आत्मकथा के अंश पढ़कर सुना रहे थे दिलीप शर्मा। सवेरे के 8 बजने को है, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, और 8:15 पर होगी मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी

0: क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान

0: राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
1: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के

0: किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है।
1: बिल्कुल, और आज फिर से एक नया सवेरा है और इस नए सवेरे में डिजिटल एंड फन फ्राइडे लेकर हम हाजिर हैं। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ रश्मित
0: और मैं हूँ भगवती लक्षकार।
1: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। और एक बार फिर से हम ये बता दें कि आज क्या क्या होने वाला है।
1: बिल्कुल, देखिए आज डिजिटल एंड फन फ्राइडे है, तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत करेंगे आज के दिन विशेष की बात करके। आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस, और इसके बाद स्मार्ट जीवन की बात करें तो फिटनेस ट्रैकर्स और हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स की जानकारी आज हम अपने श्रोताओं को देंगे।
0: बिल्कुल, और फिल्मी फ्राइडे में हम बात करेंगे इस सप्ताह की रिलीज फिल्में और OTT श्रृंखला की, और साथ ही साथ वैश्विक सिने जगत पर पुरस्कृत भारतीय फिल्में और उनकी बातें होगी और श्रोता संवाद भी होगा।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता आज के पूरे कार्यक्रम में क्या उन्हें पसंद आ रहा है उसके बारे में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उनकी जो व्हाट्सएप है वो हम शामिल करेंगे 9:10 से। और आज के हमारे नंबर्स जो होंगे वो होंगे 9462697568।

0: बिल्कुल सही है कि सहयोग करते रहिए, एक दूसरे का हाथ बटाते रहिए और साथ साथ चलते रहिए।
1: बिल्कुल भगवती, आपने गीत भी कुछ ऐसा ही प्ले किया, जो तुम ना हो। और कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा हो जो हमारी सहायता कर सके। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान के भीतर मानवता का भाव ज़रूर हो, क्योंकि अगर आप कोई किसी आपदा में है, कोई किसी परेशानी में है, तो आप में वो भाव हो कि आप उसकी हेल्प कर सकें।
0: बिल्कुल, इसीलिए मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को, और ये दिन उस महान व्यक्ति हेनरी ड्यूना की याद में मनाया जाता है जिन्होंने रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना की थी।
1: बिल्कुल, देखिए हेनरी ड्यूनेंट का जन्म जो है वो 8 मई 1828 में हुआ। 1859 में सॉल फेरिनो की युद्ध में लगभग 40,000 घायल सैनिकों की उपेक्षा और तड़प को देखकर उन्होंने अपने अनुभवों को मेमोरी ऑफ सॉल फेरिनो नामक पुस्तक में लिखा। और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1863 में ये संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका उद्देश्य था मानव और सेवा की भावना को बढ़ावा देना, आपदा और युद्ध के समय मदद करने वाले स्वयं सेवकों का सम्मान करना और लोगों को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड और सहायता के लिए जागरूक करना।
0: ये दिन न केवल सेवा और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में सहानुभूति, करुणा और एकता का भी संदेश देता
1: बिल्कुल
0: है।
1: देखिए, जो रेड क्रॉस जो है वो 7 मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ये सिद्धांत है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। और हर साल इस दिन की एक थीम होती है। इस बार की जो थीम है वो है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी हर परिस्थिति में मानवता को जिंदा रखना, युद्ध, आपदा और बीमारी जैसी कठिनाइयों में लोगों की मदद करना।

0: श्रोताओं, आईपीएल की अगर बात करें तो गुरुवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आखिरकार हार का सिलसिला खत्म करते हुए सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। टीम ने घरेलू इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। लखनऊ ने करीब एक महीने बाद जीत दर्ज की। टीम को पिछली जीत 9 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ मिली थी। इसके बाद खेले लगातार 6 मुकाबलों में टीम को हर बार हार का सामना देखना पड़ा और जीत के हीरो ओपनर मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने 111 रन बनाए, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक जड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने धमाकेदार शुरुआत की और बार बार रुकावट डालती बारिश के बीच मिचेल मार्श और आर्शिन कुलकर्णी ने 95 रन की ओपनिंग साझेदारी निभाई और अर्शिन के बाद मार्श ने पूरन जो कि 38 रन के साथ 70 रन जोड़े। इस दौरान उन्होंने 48 गेंदों में लखनऊ के लिए लीग इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी जड़ी।
1: बिल्कुल, देखिए टीम ने कुल रन बना

209 और 3 विकेट खोकर 19 ओवर में, क्योंकि बारिश की वजह से 1 ओवर को कम कर दिया गया। और आरसीबी ने शुरुआत में ही 9 रन पर दोनों ओपनर्स को गवा दिया और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए लक्ष्य को वो पार नहीं कर पाई। और आज के मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आज मैच होने वाला है।

0: चलिए तो अब कुछ लोकल अपडेट्स की बात करें तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि 10 मई को सुबह 11 बजे लोक कला मंडल में नाट्य कार्यशाला होने वाली है, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से नाट्य कला के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जो भी श्रोता इच्छुक हैं वो वहां जा सकते हैं। इसके अलावा बागोर की हवेली में 9 मई यानी कल 9:30 से छाया चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें संत मावजी के 300 वर्ष पुराने चौपड़ों को पर्यटक देख सकेंगे। इसी के साथ एक खुशखबरी हमारे शहरवासियों के लिए है कि माता रोपवे का संचालन समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है और इसका उद्देश्य है शहर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, परिवार के साथ आप नाइट टूरिज्म का पूरा आनंद ले सकते हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारियां जिला प्रशासन ने कर ली है और ये जो परीक्षाएं होगी यानी कल और परसों 9 और 10 मई को होगी और इस परीक्षा में उदयपुर में कुल 59,319 अभ्यर्थी अपने भाग्य का फैसला करेंगे। और जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार उदयपुर जिले में 189 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 88 राजकीय और 101 निजी शिक्षण संस्थान शामिल है।
0: बिल्कुल भगवती, देखिए इतनी ज्यादा तादाद में अभ्यर्थी और उनके परिजन हमारे शहर आएंगे तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दिल्ली गेट सभी स्थानों पर जाम लग सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन आमजन से भी सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। उसी के बाद कुछ और लोकल हैपनिंग्स की बात करें तो जगदीश मंदिर में आज ध्वजा परिवर्तन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे ज्येष्ठी षष्ठी महोत्सव कहा जाता है। पूरे मेवाड़ में के आराध्य भगवान जगन्नाथ के धाम जगदीश मंदिर में आज आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। करीब 450 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए मंदिर में 79 फीट ऊंचे शिखर पर नई ध्वजा चढ़ाई जाएगी। ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के गरुड़ ध्वज का स्वरूप प्रतीक है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां आते हैं। तो आज सुबह 9 बजे विधि विधान से पूजा के बाद पुरानी ध्वजा उतारी जाएगी और नई ध्वजा फहराते हुए श्रद्धालुओं को इसके दर्शन कराए जाएंगे।

0: सो कुछ खूबसूरत गीतों के साथ नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं। और अब थोड़ी सी फिटनेस की बात करें, उससे पहले हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज FM रेडियो लेक सिटी से सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, जिसमें आज हमारे साथ होंगे रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरभ आनंद। तो अगर आप भी संबंधित विषय पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9462697568 नंबर पर, और यही नंबर है लिसनर्स कनेक्ट का भी। तो आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, तो आपकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम ये कहें कि आज हमने विश्व रेडक्रॉस दिवस मना रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है। और साथ ही अब हम कुछ फिटनेस एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो अगर आप भी स्मार्ट हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कि नहीं।
1: बिल्कुल, और स्मार्ट लिविंग में आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस ट्रैकर्स और हेल्थ ऐप्स के बारे में, क्योंकि देखिए कदमों, कैलोरी, हृदय गति और नींद को ये ट्रैक करते हैं, और ये हेल्थ इन्फिनिटी और कई सेवाओं के साथ 2 मिलियन प्लस खाद्य पदार्थों का कैलोरी काउंटर और 800 प्लस स्मार्ट उपकरणों से डेटा सिंक करने की सुविधाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए और एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल फिट की, जो कि एक बहुत ही सिंपल और फ्री ऐप है, जिसमें स्टेप्स, वॉकिंग और रनिंग ट्रैक ये करता है, हार्ट पॉइंट्स और मूव मिनट्स के जरिए आपकी एक्टिविटी दिखाता है। ये बिगनर्स के लिए तो बहुत बेस्ट है।
1: और हेल्थीफाई मी की बात करें तो कैलोरी ट्रैकिंग और भारतीय आहार के अनुसार भोजन की योजना के लिए ये लोकप्रिय ऐप है।
0: बिल्कुल, और इसके बाद बात करते हैं माय फिटनेस पल की, जिसमें डाइट और कैलोरीज ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर है। फूड डेटाबेस के लिए इसमें सहायता मिलती है, एक्सरसाइज और डाइट दोनों को ये ट्रैक करती है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है भगवती, जिसका नाम है स्ट्रावा, जो कि रनिंग और साइकिलिंग के लिए बेस्ट है। GPS ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस करती है, दोस्तों के साथ कंपटीशन किया जा सकता है और अपनी जो गतिविधियाँ हैं उसको शेयर भी किया जा सकता है।
1: एक ऐप और है फिटबिट, ये आपके लिए एंट्री लेवल से लेकर उन्नत ट्रैकिंग तक की सुविधा प्रदान करता है। और एक है एप्पल फिटनेस, और ये ऐप है एप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए जिनके पास एप्पल फोन है ना, जो स्वास्थ्य और कसरत का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है और आपको आपके हेल्थ के बारे में जानकारी देता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ एक और एप्लीकेशन आती है, वो है जे फिट, एक बेहतरीन वर्कआउट ट्रैकर और जिम ट्रेनर ऐप है, जो कि हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके एंड्रॉयड फोन को पर्सनल ट्रेनर में बदल देती है। ये 1300 से भी अधिक विस्तृत व्यायामों, रूटीन प्लानर और प्रगति को ट्रैक करने के लिए 50 लाख से भी अधिक डाउनलोड के साथ लोकप्रिय है, जो मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करती है।
1: हेल्थ इनफिटी ये एक और ऐप है,

0: और ये वजन घटाने, पानी के सेवन और कसरत के लिए एक ही ऐप में कई सुविधाएं आपको प्रदान करता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, कुल मिला के बात यह है कि हेल्थ मॉनिटरिंग जो एप्स होती हैं वो आपकी डेली एक्टिविटी पर नज़र रखती हैं, वेट लॉस और फिटनेस गोल अचीव करने में मदद करती हैं, स्लीप और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने में सहायक होती है, मोटिवेशन मिलता है, डिसिप्लिन में आप रहते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो गूगल फिट को यूज़ करें, अगर डाइट और फिटनेस चाहिए तो माई फिटनेस पल को यूज़ करें, और अगर रनिंग को पसंद करते हैं तो स्ट्रावा आपके लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है।
0: तो बिल्कुल, इनका उपयोग करके आप अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए 2 दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे ये मेरा खेत का आम है, तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे, तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2000

0: 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
1: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कल SBI पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रूपये की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
2: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काटी गया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा कर क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा गजनेर तहसील।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाईमाधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, ACB, CIDCB, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार।

0: बाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, उदयपुर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
2: और मैं रश्मि। तो अब इस कार्यक्रम के दूसरे चंक में बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की।
1: तो आज दादी की शादी, ये जो है कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ एक फिल्म और आ रही है, वो है बाजिंग खवाटी
2: जी,
1: है ना। और मैं एक्टर नहीं हूँ, ये फिल्म भी आ रही है, और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और अन्य कलाकार भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिंदी ड्रामा की, तो डुगडुग फिल्म आज और रिलीज़ हो रही है।
2: बिल्कुल, और साथ ही 8 मई को यानी आज ही रिलीज़ हो रही है गबरू फिल्म, जो कि सनी देओल की सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है। और अगर कुछ OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है ग्लोरी फिल्म, और थैंक यू नेक्स्ट एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है।
1: साथ ही साथ लुक्खे भी आ रही है, और ये प्राइम वीडियो पर आ रही है, और वाजा 2 ये जियो सिनेमा पर आएगी, और सिटाडेल सीजन 2 की शुरुआत भी आज होने वाली है। एक और जो है डकैत और लव इंश्योरेंस कंपनी इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5, ये भी आज रिलीज हो रही है।
2: देखिए, और आने वाले हफ्ते में अगर हम 15 मई की बात करें तो संजय दत्त और अमित साध की राजनीतिक ड्रामा फिल्म आने वाली है आखिरी सवाल। बिल्कुल, और अब देखिए कुछ कलेक्शन की, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें भगवती, तो राजा शिवाजी फिल्म जो है वो पहले वीकेंड में लगभग 10 करोड़ की कमाई कर चुकी है, और कुल कलेक्शन करीब 11 से 12 करोड़ तक पहुंच चुका है। फिल्म एक दिन की बात करें तो ओपनिंग थोड़ी सी कमजोर रही, अब तक लगभग 3 से 4 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। भूत बंगला फिल्म की बात करें तो तीसरे सप्ताह में भी मजबूत प्रदर्शन रहा है, भारत में लगभग 150 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ से भी अधिक कमाई कर चुकी है। और अब बात करते हैं धुरंधर 2 यानी द रिवेंज की, तो 7वें हफ्ते में भी शानदार कमाई उसकी जारी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 1785 करोड़ के भी पार बताया जा रहा है।
1: ओ श्रोताओं, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं ये आप ज़रूर बताइए, और हमारे फ़ोन नंबर है 9462697568।

0: चलिए अगर हम बात करें भारतीय सिनेमा की, तो भारतीय सिनेमा का इतिहास बहुत पुराना है ना। और भारतीय सिनेमा ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक मंच पर भी एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कई पुरस्कृत भारतीय फिल्मों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना पाई, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज और कला को भी दुनिया के सामने रखा।
1: बिल्कुल, तो हम कुछ फिल्मों का जिक्र करते हैं 1982 की फिल्म गांधी का, जिसे पुरस्कार मिला एकेडमिक अवार्ड में। 8 ऑस्कर इस फिल्म ने प्राप्त किए। खास बात इस फिल्म की ये रही कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये फिल्म विश्व भर में सराही गई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक मंच पर पहुँचाया।
0: ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये 2024 में आई थी और पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। और ये पुरस्कार प्रतिष्ठित है और ये पहली भारतीय फिल्म है जो मुंबई की दो नर्सों की कहानी बताती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ बात करते हैं 1957 की फिल्म मदर इंडिया की, जिसके निर्देशक रहे महबूब खान। और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। भारतीय ग्रामीण जीवन और नारी शक्ति का सशक्त चित्रण इस फिल्म में नजर आता है। 1988 की फिल्म सलाम बॉम्बे का जिक्र करें तो इस फिल्म के निर्देशक रहे मीरा नायर और पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया कैनन्स फिल्म फेस्टिवल में सम्मान और ऑस्कर नॉमिनेशन भी इसे मिला। इस फिल्म की खास बात थी मुंबई के सड़क बच्चों की कठोर सच्चाई को ये फिल्म दर्शाती है।
0: और ऑस्कर की ही बात करें तो RRR SS राजामौली की फिल्म गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा था।
1: बिल्कुल, और लगान फिल्म की बात करें जो कि 2001 में आई, आशुतोष गवारीकर इस फिल्म के निर्देशक रहे। ऑस्कर नॉमिनेशन इस फिल्म को मिला और खास बात इस फिल्म की थी क्रिकेट और स्वतंत्रता संग्राम का अनोखा मेल इस फिल्म में बताया गया। और 2008 की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर को हम कैसे भूल सकते हैं, निर्देशक रहे डैनी बॉयल और पुरस्कार मिला 8 ऑस्कर। और साथ ही खास बात इस फिल्म की रही, मुंबई की झुग्गियों से उठकर सपनों को सच करने की कहानी इस फिल्म में बताई गई।
0: और कान फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो जहां पर भारतीय फिल्म प्रदर्शित हुई उसमें हमने ऑल वी इमेजिन एज लाइट की तो बात की ही है, साथ ही साथ हम बात करें 1946 में आई नीचा नगर की, तो भारत की पहली आधिकारिक एंट्री जिसने कान में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड प्रिक्स जीता था।
1: और बिल्कुल, साथ ही बात करते हैं द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म की, जो कि जिसमें पुरस्कार मिला ऑस्कर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। और इस फिल्म की खास बात रही, इंसान और प्रकृति के रिश्ते को दर्शाने वाली ये बहुत ही भावात्मक कहानी थी। अगर श्रोताओं ने नहीं देखी है तो जरूर देखें।
0: और पाथेर पांचाली सत्यजीत रे की ये मास्टरपीस कान में सर्वश्रेष्ठ मानवीय दस्तावेज का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी, जो कि 1955 में आई थी।
1: बिल्कुल, साथ ही 1957 की फिल्म वी शांताराम द्वारा निर्देशित दो आंखें 12 हाथ की बात करें भगवती, तो बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिल्वर बियर और OCIS पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया।
0: द लंच बॉक्स की बात करें तो 2013 में आई थी रितेश बत्रा की ये फिल्म और कान फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स वीक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड इसने जीता था।
1: और इसी के साथ 1960 की फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म रही अनुराधा, जिसमें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन बियर पुरस्कार के लिए इस फिल्म को नामांकित किया गया।
0: कोर्ट आई थी 2014 में चैतन्य तामाणे की मराठी फिल्म थी, जिसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लॉयन ऑफ द फ्यूचर पुरस्कार

0: और कई अन्य पुरस्कार जीते थे।
1: और इसी के साथ श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म निशांत की बात करें जो कि 1975 में आई। इस फिल्म ने कान फिल्म समारोह में पाल्मी डी और पुरस्कार के लिए इस फिल्म को भी नामांकित किया गया।
0: और हाल ही में आई है बुंग फिल्म, लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा निर्देशित ये मणिपुरी फिल्म है और 2026 में बाफ्टा पुरस्कार से ये सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार इसने प्राप्त किया।
1: बिल्कुल, और देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर हम बात करें बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम की जो कि 1966 में आई, मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार के लिए इसे नामांकित किया गया।
0: और ऑल दैट बिट्स 2022 में आई थी, शोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसने कान में द ले ऑयल डी और ये जो गोल्डन आई है पुरस्कार उसने जीता।
1: बिल्कुल, इसी के साथ 1989 की फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो, ये है सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म जिसे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो मतलब ये जो फिल्में हैं ये साबित करती हैं कि भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति, भावना और सामाजिक सच्चाइयों का वैश्विक प्रतिनिधि करती हैं।
0: साथ ही साथ यथार्थवादी कहानियों पर ये जो है फिल्में आई है, क्षेत्रीय सिनेमा का दबदबा भी इससे सिद्ध होता है और महिला केंद्रित और सशक्तिकरण की जो जागरूकता है वो भी यहाँ पर नजर आती है।
1: बिल्कुल, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज भारतीय फिल्में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सम्मान प्राप्त कर रही हैं।

0: चलिए, तो बहुत सारी बातों के साथ साथ हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप भी आने लगे हैं भगवती। तो रुखसाना बानो रहमान कॉलोनी उदयपुर की हमारी श्रोता हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रही हैं और सभी जानकारियां उन्हें पसंद आ रही हैं। साथ ही बहादुर चक्रवर्ती जो हैं वो रामशिरिया तहसील से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें हमारे सभी प्रोग्राम को वो तल्लीनता से सुनते हैं और तारीफ भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और छत्रपुर बुंदेलखंड से हमारे एक श्रोता है और ये लिखते हैं कि आकाशवाणी उदयपुर से आपके सारे प्रोग्राम हमें अच्छे लगते हैं और मेरा पता है बस स्टैंड रमोटोरिया तहसील गुवारा जिला छत्रपुर है ना, और ये कह रहे हैं कि आपके सारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपका नियमित श्रोता हूँ और आपका हर प्रोग्राम बड़े चाव से सुनता हूँ।
0: बिल्कुल, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं। साथ ही हिरण बगरी सेक्टर 4 के सुशील यादव और रेणु यादव हमारे जो श्रोता हैं वो हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और उनका कहना है कि समय न जाने कैसे निकल जाता है, यानी कार्यक्रम का समय कुछ और अधिक होना चाहिए। तो चलिए, आपकी ये बात हम अपने अधिकारियों तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल और कोई मैसेज है?
1: बिल्कुल, मैसेज लगातार मिल रहे हैं लेकिन इस गीत के बाद।
0: बिल्कुल।

ये हमारे एक और श्रोता है जो है गगनदीप थाती, तृप्ता कुमारी थाती, टोटोवाल नवा शहर पंजाब से ये हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं और इनको प्रोग्राम में बताई जानकारियाँ बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही साथ शांति रावत ये भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये कहते हैं कि आपके बजाए गीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो हमने पहले जिनका संदेश पढ़ा था, उन्होंने फिर से लिखा है कि मेरे गांव का नाम टोरिया, तहसील गुवारा, जिला छतरपुर, बुंदेलखंड है और बहादुर चक्रवर्ती इन्होंने जो है हमें ये संदेश भेजा है। साथ ही साथ कहा है कि राजस्थानी आवाज़ में भी कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाए। तो बिल्कुल हम आपके संदेशों को जो है हमारे अधिकारी तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मैसेज किए और अब कार्यक्रम का जो है वक्त होता है। तो अब दीजिए आपके दोस्त भगवती लक्षकार और मेरे साथ रश्मीत को अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

नमस्कार, उदयपुर अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 लीजिए आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।

0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी,
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@ciet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: মানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: बीस जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने

0: भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।

0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 10 बजे है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज जंगबाज फिल्म के गीत से मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें।

फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें हैं, बप्पी लहरी ने इसका संगीत तैयार किया है।

कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में इतिहास फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और कार्यक्रम का अंतिम गीत आप लुत्फ लीजिए खुदगर्ज फिल्म से साधना सरगम और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ें हैं। राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है, आप इस गीत का आनंद लीजिए और दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के। अभी तक आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। सवेरे के 11 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कुछ राजस्थानी लोकगीत। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम गोखड़ा। गोखड़ा कार्यक्रम में मैं का सुनवा वाला सगला श्रोता और घणो घणो स्वागत करा। कार्यक्रम में आप सब ने माँ को घणा मानसू राम राम सा। कार्यक्रम में आई गया हाँ तो शुरुआत करा अणी गीत रे लारे जिन्हें गायो है राजबन्ना और जानवी।

0: फंस जाऊं, हर बंधन में बंध जाऊं।
1: यो बढ़िया सो प्यार भरो राजस्थानी गीत आप हुण्यो बार। तो अबे आपने एक थोड़ो स्लो यो गाणो है, पर सीमा मिश्रा री आवाज़ रो यो बड़ो प्यारो सो गाणो, यानी गर्मी में आपने खूब ठंडो ठंडो लागेगा। तो आओ सा मलीना आनंदला अणी गीत रो।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी उदयपुर रूम आकाश श्रोता सुन रहे हैं राजस्थानी गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा। आउसा अबे आपने हुणावा मंजू शर्मा और दिलबर हुसैन रो गायो तो को यो लोक गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गोखड़ा। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 11:30 हुए हैं। ये समय है आप तक पहुंचाने का कुछ गैर फिल्मी गीत, कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, ये आवाज़ थी तलत अज़ीज़ की। हम आपको बता दें कि आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अज़ीज़ की ही एल्बम खूबसूरत के कुछ नगमे। आइए सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी उदयपुर से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमको आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार तलत अजीज की गाई एल्बम के कुछ गीत। आइए सुने ये अगले गीत।

तलत अजीज के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। मध्याह्न के ठीक 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं दोपहर फिल्म संगीत। पहली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं 10 नंबरी, इस फिल्म से मुकेश और साथियों की आवाज़ें।

जी हाँ दोस्तों, जीवन की सच्चाई 1 से 10 नंबर तक बताता है ये खूबसूरत सा गीत अभी हमने सुना। और सच ही कहा है कि हर कोई आजकल जीवन में दूसरे से एक कदम आगे चलना चाहता है, ऐसी ही एक सच्चाई इस अगले गीत में।

जी हाँ, हम तो हमेशा से यही चाहते हैं कि आप सभी के रास्ते, आपके सभी के जीवन के रास्ते इसी तरह खुशियों से भरे पूरे रहें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी किसी भी इंसान के साथ कोई ऐसा खेल खेल जाती है कि उसका जीवन उदासी से भर जाता है। ऐसे में उसके दिल से क्या आह निकलती है, आइए सुनते हैं।

जिंदगी में सुख और दुख का आना जाना तो नियति का खेल है, लेकिन हमें तो बस ज़रूरत है हौसले की।

श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अगला नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया हुआ फिल्म का नाम वो सात दिन।

जीवन जीने का असली मज़ा तो उसी में है कि जाने वाले इंसान को और आने वाले सुख को हम हमेशा याद रखें।

मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर दिल घायल कर दूँ ऐसा मैं हूँ शिकारी, बिना तीर दिल घायल कर दूँ ऐसा

समझाऊं, पागल को पागल पहचाने जाने नहीं अनाड़ी। ओ मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर दिल घायल कर दूं ऐसा मैं हूँ शिकारी। ओ मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी।

आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत के आखिर में आपको एक बढ़िया सा सुंदर सा गीत और सुनवा देते हैं। त्रिदेव फिल्म का ये गाना है, अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ें।

0: श्रोताओं, ये था फिल्म संगीत। आइए अब जयपुर अजमेर से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी AI के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान AI समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का

0: लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो AI से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के। दिन के 1:05 हो चुके हैं। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है महिला जगत।

0: जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना हमारी तकदीर में था वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। इसी प्यारी सी दोस्ती के साथ मैं खुर्शीदा बानू और मेरे साथ है
1: दीपिका पुरबिया।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दीपिका क्या कैसे हो तुम?
1: बहुत अच्छी हूँ मैं और आप भी बहुत खुश नजर आ रही हो आज।
0: बिल्कुल दीपिका, जब भी मुझे रेडियो सेट पर आने का मौका मिलता है तो खुशी का ठिकाना दुगना हो जाता है। मतलब इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं बयां नहीं कर सकती।
1: अच्छा चलो बताओ, अब बच्चों की छुट्टियां होने वाली है तो कहाँ घूमने का इरादा है आपके?
0: बिल्कुल, घूमने फिरने तो हम जाएंगे ही, और घूमने फिरने में जो कुछ तैयारियां हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम महिलाएं हैं और तैयारी तो हमें ही करनी पड़ती है, तो कुछ तैयारी हम भी करें और हमारी सखियों से भी करवाएं।
1: बिल्कुल, आज हम सखियों से यही बात करेंगे कि घूमने जाने से पूर्व की जाने वाली तैयारियां कैसे करें, है ना?
0: यात्रा पर जाने से पहले की गई अच्छी तैयारी यात्रा को सुखद और सुरक्षित और यादगार बनाती है दीपिका।
1: बिल्कुल सखियों, यात्रा करना जीवन का एक सुखद अनुभव है। यह न केवल हमारे मन को तरोताजा करता है बल्कि हमें नई जगहों, संस्कृति, लोगों से परिचित भी कराता है। लेकिन एक सफल और आनंददायक यात्रा के लिए सही तैयारी होना बहुत ही आवश्यक है।
0: बिल्कुल, और जब भी हमें कहीं जाना होता है दीपिका तो वहाँ के बारे में हम जानकारी जरूर ले लें। सबसे पहले तो हम बुकिंग वगैरह करवा लें, जहाँ जा रहे हों वहाँ के मौसम के बारे में भी पता करें कि कैसा वहाँ का मौसम है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता करें, भाषा और घूमने वाली जगहों के बारे में पहले से जानकारी लें ताकि हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आए।
1: यही मतलब आपकी यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले यात्रा का उद्देश्य स्थान तय करना है और हमें यह समझना जरूरी है कि हम घूमने, पढ़ाई या किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं, है ना? तो जैसे आपने बताया कि स्थान तय

0: होने के बाद वहाँ के मौसम की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसी के अनुसार अपने कपड़े और ज़रूरी सामान पैक कर सकें,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और बुकिंग्स वगैरह हम करवा लें और बिल्कुल क्लियर करवानी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जैसे कि टिकट्स ट्रेन के हो, फ्लाइट के हो, बस के हो, जो भी हो, पहले से बुकिंग होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या आगे दिक्कत आती है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में लोग बहुत घूमने जाते हैं तो फिर टिकट्स
0: बिल्कुल
1: वगैरह नहीं मिलती है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह यदि हम होटल में रुकने वाले हैं तो उसकी भी बुकिंग हम पहले से ही कर ले तो वो ज़्यादा समझदारी होती है।
1: बिल्कुल, और यात्रा कार्यक्रम की लिस्ट हमें बना ही लेनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज साथ में ज़रूर रखें ताकि हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, जैसे कि हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, टिकट, ये साथ में रखें, क्योंकि जल्दबाजी इतनी हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये छोटी मोटी बातें नज़रअंदाज करते हैं और ध्यान नहीं रहता और भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दस्तावेज के साथ साथ हमें हमारी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे कि कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, मोबाइल के चार्जर हैं, पहचान पत्र हैं, नगद राशि हैं।

0: स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ के नियमों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, उतना ही जरूरी जितना कि यात्रा पहले पर्याप्त आराम करना चाहिए और अपने साथ प्राथमिक चिकित्सा का सामान अवश्य रखना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए भोजन और पानी का सेवन भी करते रहना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और घर की सुरक्षा की बात हम करें तो जब भी हम घर से बाहर निकले तो घर की बिजली, पानी के नल और गैस सिलेंडर को अच्छे से बंद करके हमें निकलना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और कीमती सामान लॉकर में रखें और खिड़की दरवाजे सुरक्षित बंद करके हम बाहर निकले। ये तो रही हमारी सारी तैयारियाँ। और एक छोटा सा टिप्स और देना चाहती हूँ कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो प्लीज़ पानी में न उतरे, पानी वाले
0: बिल्कुल
1: प्लेसेस से दूर रहें, दूर से आप आनंद लीजिए।
0: बिल्कुल, घूमने का आनंद लीजिए, कोई ऐसी असुविधा जैसी या फिर कोई दुर्घटना जैसे कार्य न करें।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल अपना जो घूमने का है वो अच्छे से सफर करें।
1: और अब मैं भी सखियों को लेकर चलती हूँ कहीं और चले। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं।

0: खूबसूरत गीत और संदेश के बाद हम फिर से प्रोग्राम में आते हैं। जब हम महिलाएं हैं तो महिलाओं से ही बातें करेंगे, है ना?
1: बिल्कुल। और महिलाओं का एक और विषय जो रहता है वह है सामाजिक सेवाओं में महिलाओं का योगदान।
0: बिल्कुल,
1: जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
0: हाँ, और आज हम जानते भी हैं कि महिलाएं जो हैं किसी भी क्षेत्र में, दीपिका, कम नहीं है।
1: कम नहीं है और पीछे नहीं है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे ही बढ़ी है। तो हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण ही रही है, लेकिन आज के समय में यह भूमिका और भी सशक्त और व्यापक हो गई है। महिलाएँ अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
0: बिल्कुल, सामाजिक सेवा में महिलाओं का योगदान निस्वार्थ, व्यापक और परिवर्तनकारी रहा है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अगर हम बात करें तो मदर टेरेसा को ही देख लो, उनके योगदान को भी हम कैसे भूल सकते हैं। मदर टेरेसा हैं, अनन रॉय जैसी हस्तियों से लेकर आशा कार्यकर्ताओं तक महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाकर समाज की रीढ़ बनी हुई है।
1: बिल्कुल, सामाजिक सेवाएं वह कार्य है जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना है। इसमें शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, गरीबों की मदद करना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना आदि सम्मिलित हैं। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ ही रही है।
0: और प्रमुख योगदान की अगर हम बात करें तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM के रूप में काम करते हुए महिलाएं टीकाकरण है, पोषण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करती हैं।
1: बिल्कुल सखियों, महिलाएं स्वभाव से संवेदनशील और सहनशील होती है, इसलिए वह सामाजिक सेवा के कार्यों को बहुत ही समर्पण और ईमानदारी से करती है। उदाहरण के लिए, यदि कई महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करती है।
0: और सखी केंद्र और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वे हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करती हैं।
1: बिल्कुल, आज हम देख सकते हैं कि कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। वे छोटे छोटे उद्योग शुरू करके न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रही है।
0: बिल्कुल, और शिक्षा और जागरूकता की अगर हम बात करें दीपिका, तो वे साक्षरता अभियानों, बाल विवाह के विरोध और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक सुधार व पर्यावरण की भी अगर हम बात करें तो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अग्रणी रही हैं।
1: बिल्कुल, इसके अलावा कई महिलाएं NGO और सामाजिक संगठनों के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसे कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा भी रही हैं और समाज में जागरूकता लाकर एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।
0: बिल्कुल, आज की नारी न केवल परिवार की संरक्षक है, बल्कि समाज और राष्ट्र की आधारशिला भी है, जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम महिलाएं होती है ना, महिला दीपिका, तो क्या है, जो भी हम काम करती है ना, वो दिल से करती है।
1: बिल्कुल, दिल से करती है। और सरकार भी महिलाओं के सामाजिक सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, उज्ज्वला योजना। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता जैसी दिशा में प्रोत्साहन भी मिल रहा है।
0: ये तो रही हमारी बातें, और अब हम फिर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जिस शख्स की गलती गलती ना लगे, किताब इश्क की तफसीर में इसे महबूब कहते हैं।

0: आज स्पेशल कुछ है तो हम वही सखियों को बताते हैं कि आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सखियो, आज हम ऐसे ही संगठन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मानवता, सेवा और करुणा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सखियो, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, जो कि हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा करना है। यह संगठन युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और बीमारियों से प्रभावित लोगों की सहायता करता है। जब कहीं बाढ़, भूकंप, महामारी या कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तब रेड क्रॉस के स्वयंसेवक सबसे पहले लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं और यह संस्था बिना किसी जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव के लोगों की सेवा करती है।
0: यही उद्देश्य है कि 1859 में इटली के सोलफेरिनो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की दुर्दशा देखकर हेनरी ड्यूरेंट ने मानवता की सेवा के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। इसके मूलभूत सिद्धांत तो तुमने हमारी सखियों को बता ही दिए कि मानव जीवन की रक्षा करना है, बिना भेदभाव के मदद करना है और विवादों में किसी एक का पक्ष न लेना है। संस्था का अपने कार्य को स्वतंत्र होना है और एक देश में एक ही रेड क्रॉस संस्था होती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए और सभी संस्थाओं का समान दर्जा और सेवा का अधिकार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सखियो, आज के समय में रेड क्रॉस का महत्व और भी बढ़ गया है। कोरोना महामारी के दौरान इस संस्था ने लाखों लोगों तक दवाइयाँ, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई थी। रक्तदान शिविरों का आयोजन करके कई लोगों की जान बचाई गई। रक्तदान महादान का संदेश देकर रेड क्रॉस समाज में जागरूकता फैलाता है।
0: बिल्कुल, अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने। रेड क्रॉस मानवता की सेवा में समर्पित, अपने अंदर की इंसानियत को पहचाने और जब भी मदद का मौका मिले जरूर करें। दीपिका, मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी हमें कोई भी जरूरतमंद नजर आए तो हमें दूर से दौड़कर उसके पास जाना चाहिए और उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दौलत तो है ना खत्म हो जाती है, लेकिन उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना दीपिका, वो कभी खत्म नहीं होगी।
1: वो हमारे साथ चलती
0: बिल्कुल
1: है,
0: चलती हैं और आखिरी सांस तक साथ में रहती हैं, क्योंकि सच्चे दिल से अगर कोई दुआ देता है तो वो हमेशा हमें लगती ही है।
1: बिल्कुल, मानवता की सच्ची पहचान दूसरों की सहायता करने में है और रेड क्रॉस हमें यही सीख देता है कि कठिन समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास पर भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकते हैं। यदि हम सभी अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी समझें और ज़रूरतमंदों की मदद करें तो हमारा देश और भी मजबूत और संवेदनशील बनेगा। खासतौर पर युवाओं की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युवा यदि रक्तदान, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सेवा जैसे कार्यों में भाग ले तो समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें यह संकल्प लेना भी चाहिए कि हम मानवता और सेवा के मार्ग पर चलेंगे और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे।
0: बिल्कुल, जब भी मौका मिले आप मदद जरूर करें, कैसी भी मदद हो हमेशा करनी चाहिए। और अब करें वही काम जो हम हमेशा करते हैं,
1: बिल्कुल मनोरंजन कराया जाए अपनी सखियों का।
0: काश तुम पूछो कि सुकून कहाँ है और हम निगाहें तुम पर कर दें।

0: तो खुशीदा आगे बढ़े और जानकारी देते हैं। अभी जो चल रहा है हमारा रोड सुरक्षा सप्ताह, यानी यूएन ग्लोबल रोड सुरक्षा सप्ताह,
1: बिल्कुल
0: सड़क सुरक्षा सप्ताह आज पूरे विश्व के लिए एक गंभीर विषय बन चुका है।

0: प्रतिदिन हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और अनेक लोग जीवन भर के लिए घायल या विकलांग हो जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क दुर्घटना मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है और यही कारण है लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता
1: तो
0: है।
1: तो कहने का मतलब यह है कि दीपिका कि हम भी अपनी सखियों को जागरूक कर दें कि सड़क सुरक्षा के कुछ नियम अगर हम फॉलो करेंगे तो किसी भी दुर्घटना का शिकार हम नहीं होंगे
0: क्योंकि आजकल हमारी सखियां सभी ड्राइविंग करना सीख गई है और चलाती भी है, तो उनको भी हमें जागरूक करना बहुत जरूरी है
1: क्योंकि जाना आना तो देखो पड़ता ही है और घर बैठने से काम नहीं चलता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते घर में बैठे, तो निकलना तो है ही लेकिन सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। तो वाहनों को नियंत्रित गति में चलाना है। कई बार होता है दीपिका की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम गिर जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं, लेकिन अगर स्पीड मेंटेन रहेगी, गति अगर कम रहेगी, तो अगर हम गिर भी गए खुदा न खास्ता तो हमें तकलीफ कम होगी, कुछ कम चोटें ही लगती हैं
0: और हम संभल भी सकते हैं। अगर हमारी स्पीड कम होगी तो हम थोड़ा संभल सकते हैं।
1: और जब भी हम कार चलाते हैं तो इसका ध्यान रखें कि हम सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और जो टू व्हीलर्स वाले जो हैं उन्हें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स का हमें प्रयोग करना चाहिए, जो भी रूल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। वाहन चलाते समय एक ये मोबाइल का ट्रेंड बहुत चल गया है कि हम बहुत मोबाइल पर बातें करते हैं। अगर आपका फ़ोन आ ही जाता है, बहुत इमरजेंसी है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वाहन को साइड में खड़ा करें और आपकी बात अगर ज़रूरी है तो आप आराम से तसल्ली से बात कर लीजिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप घर ना पहुँचे क्योंकि आपका इंतज़ार कोई ना कोई कर रहा होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और ये सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। सड़क पर चलते समय छोटी छोटी सावधानियां हमारे और दूसरों की ज़िंदगी बचा सकती है।
1: और अगर वाहन की बात करें और महिलाओं की, जैसे कहा कि हम बात ना करें तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम महिलाएं हैं और हमारे देखो एक तो बाल होते हैं खुले खुले, तो उनका भी हमें संभालना है। और साथ ही साथ हमारे जो साड़ियों के पल्लू जो इधर उधर लहराते रहते हैं, दुपट्टे हैं हमारे, तो उन्हें भी हम अच्छे से कवर करके रखें ताकि कहीं व्हील में ना आ जाए, क्योंकि व्हील में आने के बाद हादसा हो जाता है। तो अपने बालों को, अपने दुपट्टों को और अपने साड़ियों को अच्छे से समेट कर रखे सकें, आप अच्छे से ड्राइविंग का मज़ा लीजिए।
0: और एक बात और है कि महिलाओं के साथ में आजकल युवा वर्ग में तेज गति से वाहन चलाने का स्टंट करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह केवल उनकी ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन जाता है। तो हमें यह समझना होगा कि सड़क कोई खेलने का मैदान नहीं है, एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को बदल सकती है, इसका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है।
1: और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ दीपिका कि हम घर से जब निकलते हैं तो हमारे पास पर्स वगैरह होते हैं, पर्स में बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी इंपॉर्टेंट्स, तो हम हैंडबैग का यूज़ करते हैं, तो हैंडबैग की जगह हम क्रॉस बैग का यूज़ करें, क्योंकि हैंडबैग तो क्या चोरों को भी खतरा रहता है, तो वो तुरंत हमारा लेकर भाग जाते हैं और हम गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। तो क्रॉस बैग अगर होगा तो आप सेफ रहेंगी सखियों। और अब फिर से चले,
0: बिल्कुल
1: घूमने चले। बिल्कुल, पहले बताते तो ज़रूर कहीं चलते, लेकिन अब तो घर लौटने का वक्त हो गया है।

0: आओ दीपिका, हम भी अब लौट चलें।
1: बिल्कुल
0: बातें तो बहुत सी करनी है, लेकिन विधि का विधान तो यही कहता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। आज है कुछ ज़्यादा बेताबी, दिले बेताब को खुदा हाफिज़। क्यों हिफाजत हम और की ढूंढे, हर नफ्स जब की है खुदा हाफिज़। इसी के साथ सखियों नमस्कार।
1: नमस्कार सखियो।

महिला जगत, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। श्रोताओं, इसका प्रसारण आकाशवाणी उदयपुर से किया गया, जिसे आप ट्यून करते हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1:45 हो चुके हैं। आइए आपको एक बार फिर से लिए चलें गीत संगीत के सफ़र पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत के जरिए। क्रिश फिल्म का गीत आप सुनने जा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

रूप कुमार राठौड़ का गाया गीत अभी हमने सुना श्रोताओं। फिल्म का नाम था अनवर। और आइए आज के फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवा देते हैं विवाह फिल्म से। इसे गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 2:10 हुए हैं। प्रस्तुत है विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना। शुद्ध पेयजल मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह आम लोगों की आर्थिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लगभग हर समुदाय पेयजल की समस्या से जूझता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समुदायों के साथ साझेदारी में काम करते हुए एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता थी जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और समस्याओं का समाधान करे। थोड़े से समन्वित प्रयास से समुदाय अपनी सोच बदल सकते हैं और स्थायी परिवर्तन की नींव रख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव में ग्रामीण विकास संगठन ने शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2018 में स्वच्छ जल मिशन नामक एक प्रमुख परियोजना की शुरुआत की। वर्तमान में इस परियोजना का संचालन और प्रबंधन शहरी और ग्रामीण विकास संगठन के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुद्ध और पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह परियोजना हर व्यक्ति को सतत आधार पर पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो हर परिस्थिति में आसानी से उपलब्ध हो। यह परियोजना उन क्षेत्रों को लक्षित कर रही है जहाँ स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पेयजल एक प्रमुख चिंता का विषय है। इन क्षेत्रों में के लोगों को अपने दैनिक उपयोग के लिए शुद्ध पेयजल खरीदना पड़ता है। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम परिषदों के सहयोग से स्वच्छ जल मिशन के प्रतिनिधि उन प्रभावित क्षेत्रों का चयन करते हैं और जहां शुद्ध पेयजल संयंत्र की आवश्यकता है। औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार RO जल शोधन इकाइयाँ स्थापित की जाती है।

स्वच्छ जल मिशन केवल आरओ जल शोधन प्रक्रिया को ही अपनाता है, क्योंकि वर्तमान में आरओ शोधन को अन्य परियोजनाओं प्रक्रियाओं की तुलना में सबसे सस्ता और बेहतरीन जल शोधन माना जाता है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी जल शोधन प्रक्रिया है जिसमें पीने के पानी से क्लोरीन, नमक और गंदगी जैसे अवांछित अणुओं और बड़े कणों को छानने के लिए अर्थपारगम्य का उपयोग किया जाता है।

दूषित पदार्थों को तलछट दूषित पदार्थों और तलछट को हटाने के अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस उन सूक्ष्म जीवों को भी हटा सकते हैं जो पेय पदार्थों में बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह पानी को आण्विक स्तर पर शुद्ध करता है जिससे केवल शुद्ध जल ही बचता है। स्वच्छ जल मिशन शुद्ध पेयजल की आदत को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज से बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा है।

0: इस प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकता है और परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में रोजगार सृजित कर सकता है। श्रोताओं, ये थी जानकारी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री स्वच्छ जल पेयजल योजना की, और इसी के साथ आज की विकास चर्चा यहीं समाप्त होती है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ

0: पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की

0: तीन सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस

0: की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम ममता भैसा,
1: राम राम सरजू भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होणवा वाला हगला किसान भाई बहना ने आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा कार्यक्रम रो टेम वियो और आपा जो है कृषि जगत कार्यक्रम लेने पधारिया हा और घनी हारी जानकारियां लेने आया हा और जानकारियां रलारे लारे घना हरा संदेश घना हरा राजस्थानी गीत और देखो सा कि अपना खेमा भाई मोमना भाई रत्नी भाई हंगले जो किसान भाई बहन है ये भी देखो कृषि जगत कार्यक्रम होणवारे वास्ते बैठ गया है सा।
1: तो देखो सरजू भाई सा आपा किसान री बात में किसान भाई री बातें जानकारी लाया हाँ कि खेत में जैव विविधता किस तरह बढ़ाई सके किसान भाई।
0: हाँ सा।
1: तो देखो खेत में जैव विविधता बढ़ावा रो अर्थ वे मिट्टी पौधा कीट और जो सूक्ष्म जीव है वणारे बीच में एक असो प्राकृतिक संतुलन बनानो जणे खेती टिकाऊ और लाभदायक बनी सके। और आज टाइम पे आपा देखा कि रसायन रो अत्यधिक उपयोग कई वेरो कि अपना जो मित्र कीट है वणाने और मिट्टी री जो उर्वरता है वणाने कम करी रहा है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा ममता भाई सा। देखो जटे जैव विविधता बढ़ावा वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीका रो फसल लगानो मित्र कीटा रो संरक्षण मृदा स्वास्थ्य और मल्चिंग स्थानीय बीजारो प्रयोग करनो है सा।
1: और देखो सरजू भाई साहब फसल विविधीकरण की आप बात करा तो एक ही खेत में अपने बार बार एक ही फसल उगावा कई वे मिट्टी रा जो पोषक तत्व वे खत्म वे जा और कीटारो जो प्रकोप है वो बढ़ी जा। फसल चक्र अपनाणो और अनाज के बाद में अपने दलहनी जो फसल है वणा ने उगावर वाते मिट्टी में नाइट्रोजन रो जो स्तर है वने प्राकृतिक रूप बढ़ाणो है सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जटे मिश्रित खेती री बात करा और किसान भाई बहना ने आपा बतावा ममता भाई सा कि मिश्रित खेती जो है वह एक ही समय में मुख्य फसलों रे लारे लारे दूसरी फसल भी आपा उगाई सक रहे हाँ जिस तरह की आपा कह ही सका। और किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि गेहूं रे लारे लारे जिस तरह चना री फसल वेगी सरसों री फसल वेगी तो अणी तरीकों जो है आपा खेती कर सक रहे हाँ। और एकीकृत कृषि प्रणाली जो है वह सिर्फ फसलों पर निर्भर नहीं रहे अन्य बजाय खेती रे लारे लारे व जो है अन्य पूरक व्यवसाय जो है बनाने भी जोड़े है जण्यू कही वे कि जैव विविधता रो सब अच्छो जो तरीको है वो अणी खेती रे महीने मिश्रित वे जा सा।
1: बिल्कुल सा। और खेत रो जो एक हिस्सो है वणी में पशुपालन मुर्गी पालन या मछली पालन कर सके और अणी में पशुआ रो जो गोबर है खाद रे रूप में काम आवे है और खेत रा जो अवशेष है वे पशुआ रे जो चारा रे रूप में अणी खेत रा भीतर एक लारे इकोसिस्टम तैयार वे जावे है सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जटे खेतरी मेडारी बात करा तो अणी पे कही है कि फलदार या छायादार पौधा वृक्ष जिस तरह आप कही सका कि नीम रो वृक्ष वेग्यो सहजन रो वृक्ष वेग्यो करंज रो वृक्ष वेग्यो ये सब लगावना चाहे तो ये वृक्ष जो है पक्षियां ने शरण भी देवे है और लारे लारे जो फसल ने नुकसान पहुंचावा वाला जतरा भी कीट है वे कीट भी खाई जावे है सा। तो अणी वास्ते तेज हवाओं मिट्टी रो कटाव रुकी सके है सा।
1: बिल्कुल सा। और खेत में जो रसायन है वणारो कम प्रयोग करीने आपा मित्र कीट है जैसे मधुमक्खियां वेगी लेडी बग वेगी केंचुआ वेग्या वणा ने बचाई सका हाँ। और रासायनिक जो खाद है जटे आपा देखा जैविक खाद और केंचुआ रो प्रयोग आपा मिट्टी की संरचना ने सुधारी सके है सा।
0: बिल्कुल सा। देखो मुख्य फसला रे जटे आपा बात करा तो मुख्य फसला रे चारे मेरे गेंदारा सूरजमुखी रा जिस तरह

0: कही सका कि हरा भरा और बढ़िया मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया फूल लगाना चाहे। और ये फूल जो है हानिकारक जितना भी कीट है वनाने अपनी ओर आकर्षित करी लेवे है और मुख्य फसल अपनी जो रेवे वह सुरक्षित वे जाकि केवारो मतलब यू ही सके जैसे सूरजमुखी रा फूल है गेंदा रा फूल है तो अणपे जो वे कीट है वे ज़्यादा जावे तो ज़्यादा बैठे तो वे ज़्यादा मनारो रस पिएगा तो वणी वजह अपनी फसल जो है वे एकदम सुरक्षित वे जाएगा सा।
1: बिल्कुल सा। और मिट्टी ने कभी भी खाली नहीं छोड़ना। फसल काटवारे बाद कई करना वनारा जो अवशेष है वे खेत में रेवा देना या पचे मल्चिंग कर लेनो अणु कही वेगा कि मिट्टी में नमी वणी थकी रहेगा और सूक्ष्म जो जीव है वे अपने सरलताओं बढ़ेगा और सूक्ष्म जीव मिट्टी ने जीवित रखे है और पौधा ने पोषक तत्व ग्रहण करवा में मदद भी करे। हाइब्रिड रे जे बीज है वे अवनी बजाय आपने जो जलवायु रे अनुकूल और पारंपरिक और स्थानीय जे बीज है किसान भाई वणा ने प्राथमिकता दे ये कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके है सा।
0: बिल्कुल सा। क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ावनो केवल एक पर्यावरण रे वास्ते ही नहीं बल्कि किसान री आर्थिक सुरक्षा रे वास्ते भी जरूरी है। यदि आप क्षेत्र में विभिन्न प्रकार रा जीव है पौधा है वे सब वेगा तो खेती पे आवा वाला जो लागत खर्च है जणी में खाद है कीटनाशक रो खर्च है वो भी दन पे दन कम वे जाएगा सा।
1: और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगा और एक समृद्ध और जैव विविधता वालों जो खेत है वो जलवायु परिवर्तन के खतरों झेलवा में भी अधिक सक्षम वे जाएगा सा।
0: बिल्कुल सा। देखो ममता भाई सा आपा किसान भाई बहना ने बहुत ही बढ़िया सी आपा जानकारी दी थी कि खेत में जैव विविधता ने बढ़ावनो। तो देखो सा कि कार्यक्रम में ने आपा आवा तो किसान भाई बहना रो मनोरंजन कराना भी जरूरी है तो आप केवो तो ममता भाई सा सबू पहला वणा ने हुणावा संदेश और वटारे बाद में हुणावा राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सा।

0: बाद में बनने हैं, जो पूरी ड्रेसिंग रे रूप में दे देनी है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो गर्मी रे मौसम में नमी रे अनुसार आपने 5 से 7 दिन में सिंचाई करनी है, और वर्षा ऋतु में यदि बारिश नहीं वे तो पानी भी देनो। जल निकासी री उचित प्रबंध अगर वेणो चाहे, क्योंकि भिंडी जो है जल जमाव ने सहन नहीं कर सके, और फसल रे जी शुरुआती है 30 से 40 दिन आने वाते बहुत ही महत्वपूर्ण वे। पहली निराई और गुड़ाई बुवाई रे 20 दिन बाद करनी चाहे।
0: बिल्कुल सा। और देखो ममता भाई सा, अणी जानकारी ने आप आगे जारी रखांगा, और एक राजस्थान गीत और देदासा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो देखो सरजू भाई सा, आपा किसान भाई ने राजस्थानी लोकगीत सुनाए और लाला रे आपा संदेश भी सुनिया।
2: हाँ सर।
1: और आपा कार्यक्रम में जानकारी दे रहा किसान भाई ने कि भिंडी री सब्जी री उत्पादन किसान भाई किस तरह कर सके। तो देखो पीला मोजेक जो वायरस है अनो यो सफेद मक्खी द्वारा फैले है, अणि में नियंत्रण रहते संक्रमित जो पौधा है वणा ने उखाड़ी ने नष्ट कर देना चाहे और इमिडोक्लोप्रिड रो छिड़काव किसान भाई ने करनो चाहे। फल छेदक कीट रे वाते नीम रो तेल या उचित कीटनाशक रो प्रयोग भी किसान भाई कर सके सा।
2: बिल्कुल सा। देखो भिंडी री तुड़ई फूला रे खिलवार महीने 5-6 दिन बाद में जदि फल कोमल और हरा हरा रेवे जदि करी लेनी चाहे। भिंडी री खेती में नियमित तुड़ई आवश्यक है। अगर तुड़ई में देरी वे जावे तो फल रेशेदार और सख्त वे जावे। जण्यू बाजार रे महीने वणारी गुणवत्ता और दाम गिरी जावे है। सही प्रबंधन और उन्नत बीजा रे प्रयोगों किसान भाई जो है अणि ने हाउ बेहतरीन आम प्राप्त कर सके सा।
1: बिल्कुल सा। किसान भाई देखो अणि भिंडी सफल उत्पादन अच्छी आय प्राप्त करेगा। लारे लारे किसान भाई खेती बाड़ी में और भी कुछ चीजा नहीं करे तो वणा ने नरो हारो फायदो वे सके। अणि इस तरीके देखो आपा सरजू भाई सा किसान भाइया ने जानकारी दा कि खेती में मल्चिंग करवारा कई कई फायदा है सा।
2: बिल्कुल सा। तो देखो ममता भाई सा जटे आपा किसान भाई बहना ने बताई रहा मल्चिंग रा कई कई फायदा है। तो मल्चिंग रा फायदा रे बारे में करावा कि मल्चिंग यानी मिट्टी ने ढकणो यो एक आसान तरीको है। जणी में पानी री बचत वेगा और ज्यादा उत्पादन दोई मिलेगा सा।
1: बिल्कुल सा। देखो मिट्टी री नमी अपने लंबा टाइम तक वणी थकी रे मल्चिंग करवाऊं और बार बार सिंचाई री जरूरत है जो कम वे जावे। लारे लारे खरपतवार नियंत्रण री बात करा तो अणी में अनावश्यक जो घास है वानी उगे और फसल ने पूरी तरीको पोषण मिलतो रहे सा।
2: बिल्कुल सा। अणी रे महीने देखो तापमान नियंत्रण भी विया करे जिस तरह गर्मी में मिट्टी जो वेवा ठंडी रेवे है। लारे लारे सर्दी रे महीने पौधाओं ठंडियो बचाव जरूर वेवे सा। और जटे आपा फसल री क्वालिटी बेहतर री बात करा तो फल जो है साफ और अच्छा हाउ तरीका रा मिले और वे अनारे महीने सड़न बहुत कम लागे है सा।
1: बिल्कुल सा। और मल्चिंग देखो किसान भाई रे उत्पादन में भी बढ़ोतरी वे अपने जो फसल बुईरा हाँ वे पौधा स्वस्थ रहे और ज़्यादा फल फूल अणियों किसान भाई ने मिले। लारे लारे मिट्टी री सुरक्षा भी वे मिट्टी रे कचाव आपा देखा अणियों बचा वे है और पोषक तत्व अणि में सुरक्षित रहे है सा।
2: बिल्कुल सा। और देखो जटे मल्च रा प्रकार है तो अन्य आपा बात करा तो अणि रे महीने आर्गेनिक मल्च वेगियो, अणि रे महीने पराली वेगी, सूखी पत्तियां वेगी, गोबर री खाद वेगी। लारे लारे जो एक पेड़ पौधा रे नीचे जो लकड़ियां री सूखी तकी भूसी वेवे वा भी अणि रे महीने वेगी। और लारे लारे जटे प्लास्टिक मल्च री बात करा तो प्लास्टिक शीट वेगिया या अणि रे महीने सफ़ेद शीट वे गया, काली शीट वे गया, ये सब चीज़ा जो है अणि रे महीने आवे है सा।
1: देखो मल्च किस तरह करना है तो मिट्टी ने तैयार करना है। मल्च री सामग्री रे वाते पौधा रे चारों ओर 5-7 सेंटीमीटर ही मोटाई में फैलाना है और तना रे पास में थोड़ो स्थान खाली रखना। सिंचाई रे बाद में किसान भाई मल्च बेहतर तरीकों कर सके।
2: बिल्कुल सा। और ध्यान

0: रखवा वाली यह बात है कि देखो प्लास्टिक या ऑर्गेनिक मल्च रो सही प्रयोग जरूर कर लेनो है और अनिले में सही चयन करना, पानी निकाल वाली व्यवस्था रखनी है, लारे लारे बहुत ही ज़्यादा मोटी परत नहीं डालनी है। और अनिले मैंने याद रखना है कि मल्चिंग जो है कम खर्च प्लस ज़्यादा उत्पादन देवा वालों वैसा।
1: तो देखो सर जी, वैसा या तो भी जानकारी और अब यहाँ पर देखो बतावा कि मल्चिंग को किसान भाई ने कई मिलेगा, तो देखो पानी री और समय री बचत वेगा, लागत में कमी आएगा और फसल री जो बेहतर गुणवत्ता है वह मिलेगा और किसान भाई ने अधिक मुनाफो वेगा। तो किसान भाई ने मल्चिंग अपनाना चाहे अपनी फसल में और मुनाफो दो ने बढ़ाना चाहे सा।
0: बिल्कुल सा, तो अत्री बढ़िया जानकारी जो है ममता भाई सा अपने किसान भाई बहना ने आपा दीदी सा। और देखो जाता जाता एक राजस्थानी गीत होना ही ने मनारो मनोरंजन और करेदा सा।
1: बिल्कुल सर।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ए पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्रिकरणम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूटीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमरीका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: तो देखो सर जी, वैसे आपा कार्यक्रम में हो जानकारी कराई, और देखो अबे घड़ी आड़ी देखा तो आपने चाल वारो टाइम वेगियो साथ, तो चाला सा राम राम सा।
1: कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के।

0: toi.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये दोपहर कालीन सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 सायंकालीन सभा के प्रसारण लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव चैनल पर अब आरंभ होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, युवाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्या।
1: और मैं हूं हर्षित। आने वाले कुछ पल में हम लेकर आए हैं इतिहास, संगीत, खेल और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से जुड़ी कई खास बातें।
0: बिल्कुल दोस्तों, हर दिन अपने साथ कुछ नई कहानियां, नई यादें और इतिहास के कुछ अनमोल पन्ने लेकर आता है।
1: और 8 मई भी एक ऐसा ही खास दिन है जिसने दुनिया को कला, संस्कृति, खेल और मानवता से जुड़े कई यादगार पल दिए हैं।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, बात करेंगे महान कलाकारों और खिलाड़ियों की और सुनेंगे उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ जिन्होंने अपने काम से दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है।
1: तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत और ज्ञानवर्धक सफर के लिए, जहाँ इतिहास

0: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस चीज की जिसने फैशन और सोच दोनों को बदल दिया है।
1: बिल्कुल दिव्या, हम बात कर रहे हैं फॉक्स लेदर की। आज की युवा पीढ़ी इसे सिर्फ पहन नहीं रही बल्कि इसे एक स्टेटमेंट बना रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग असली लेदर को के पीछे भागते थे लेकिन अब क्रुएल्टी फ्री होना ही असली स्वैग बन गया है।
1: यही तो है कि जनरेशन जेड की ताकत है दिव्या, हम स्टाइल के लिए किसी भी बेजुबान को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल पसंद नहीं करते।
0: और तो और इसका बजट एकदम पॉकेट फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल कम कीमत में शानदार फैशन लुक, कॉलेज हो या पार्टी, आप हमेशा सबसे आगे रह सकते हैं।
0: वैसे हर्षित, क्या आपने इसके रंग देखे हैं?
1: नहीं।
0: नियॉन से लेकर पेस्टल तक इसमें सब कुछ संभव है।
1: वही तो, असली लेदर में तो सिर्फ भूरे और काले रंग ही मिलते थे, यहाँ विकल्पों की कोई कमी ही नहीं है दिव्या।
0: और इसकी देखभाल कितनी आसान है, बारिश हो जाए या कुछ गिर जाए, बस एक बार साफ कीजिए और काम खत्म।
1: हम जैसे हमेशा भागदौड़ में रहने वाले लोगों के लिए तो सिर्फ एक ये वरदान से कम नहीं है दिव्या, घंटों पॉलिश करने का झंझट ही खत्म हो जाता है इसकी वजह से।
0: बिल्कुल, लेकिन हर्षित, क्या आपको पता है कि अब यह सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बन चुका है?
1: हाँ बिल्कुल, भारत के यंग एंटरप्रेन्योर सब फैक्ट्स और ये जो कैक्टस होता है, पाइनएप्पल और इन सब से लेदर बना रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नवाचार है।
0: यही तो मेक इन इंडिया का नया चेहरा है, कचरे से वर्ल्ड क्लास फैशन बनाना।
1: इसका मतलब है ज़्यादा नौकरियाँ और हम जैसे युवाओं के लिए स्टार्टअप के नए अवसर।
0: और पर्यावरण का क्या, असली लेदर की ट्रेनिंग ने में जितना पानी बर्बाद होता है, फॉक्स लेदर उससे कहीं ज़्यादा साफ और बेहतर विकल्प है।
1: सही बात है दिव्या, यानी हम स्टाइलिश भी दिख रहे हैं और अपनी धरती का ख्याल भी रख रहे हैं।
0: हर्षित, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में असली लेदर पूरी तरह से भारत बाहर हो जाएगा?
1: दिव्या, जिस तरह युवा पीढ़ी सस्टेनेबिलिटी को अपना रही है ना, मुझे तो ये लगता है कि दिव्या अब चुनाव और सिर्फ फैशन का ही नहीं है बल्कि एथिक्स का भी होने लगा है। लोगों को एथिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
0: बिल्कुल, अब लोग टेक पढ़ते हैं, उसका सोर्स देखते हैं, हम एक जागरूक पीढ़ी हैं।
1: और यही जागरूकता इस उद्योग को अरबों डॉलर का बना सकती है, भारत इसमें ग्लोबल लीडर बन सकता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप खरीदारी करें तो याद रखिए, आपका एक छोटा सा फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बी बोल्ड, बी स्मार्ट, सस्टेनेबल फैशन ही भविष्य है।

0: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत माता के उस वीर सपूत की जिसने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी, लांस नायक लक्ष्मण गुरुंग।
1: लक्ष्मण गुरुंग केवल एक सैनिक नहीं थे बल्कि वे वीरता, त्याग और अटूट संकल्प का जीवंत उदाहरण थे।
0: श्रोताओं, लक्ष्मण गुरुंग का जन्म 30 दिसंबर 1917 को नेपाल के तन्हो जिले के दाहाखानी गांव में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे लक्ष्मण बचपन से ही मेहनती और साहसी थे। उस समय गोरखा सैनिकों की बहादुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। बचपन से ही लक्ष्मण के मन में सेना में जाने और देश सेवा का सपना था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल में भर्ती ली।
1: गोरखा सैनिकों का नाम सुनते ही दुश्मनों के मन में डर पैदा हो जाता था। उनकी पहचान थी अनुशासन और बहादुरी। दोस्तों, यह वह समय था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी।
0: भारत के हजारों सैनिक अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे थे, इन्हीं में शामिल थे लक्ष्मण गुरुंग। सन 1945 में बर्मा यानी आज के म्यांमार में जापानी सेना के खिलाफ भीषण युद्ध चल रहा था।
1: यही वह युद्ध था जिसमें लक्ष्मण को अमर बना दिया। 12 और 13 मई 1945 की रात बर्मा के तोंगदाव क्षेत्र में भारतीय सेना मोर्चा संभाले हुए थी।
0: जापानी सैनिक लगातार हमला कर रहे थे, स्थिति बेहद गंभीर थी। लक्ष्मण गुरुंग अपनी पोस्ट पर तैनात थे, तभी दुश्मनों ने अपनी ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया।
1: पहला ग्रेनेड उन्होंने तुरंत उठाकर वापस दुश्मन की ओर फेंक दिया। दूसरा ग्रेनेड भी उन्होंने वापस फेंक दिया, लेकिन तीसरा ग्रेनेड जो था वो उनके हाथ में ही फट गया।
0: विस्फोट इतना भयानक था कि उनका दाहिना हाथ लगभग नष्ट हो गया। चेहरे और शरीर पर भी गंभीर चोटें आई। सोचिए दोस्तों, इतना भयानक चोट के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद लक्ष्मण गुरुंग ने अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दिया।
1: उन्होंने केवल एक हाथ से राइफल संभाली और लगातार दुश्मनों पर गोलीबारी करते रहे। पूरी रात उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। जापानी सैनिक बार बार हमला करते रहे, लेकिन लक्ष्मण चट्टान की तरह उनके सामने डटे रहे।
0: सुबह जब युद्ध समाप्त हुआ तब उनकी पोस्ट के सामने दुश्मनों के कई सैनिक मृत पड़े थे। कहा जाता है कि उनकी बहादुरी की वजह से दुश्मन उस पोस्ट पर कब्जा भी नहीं कर पाए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार यानी विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। विक्टोरिया क्रॉस मिलना किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।
0: यह सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो असंभव परिस्थितियों में भी असाधारण साहस दिखा देते हैं।
1: और लक्ष्मण ने साबित किया कि देखो, सच्चा सैनिक कभी भी हार नहीं मानता।
0: तो दोस्तों, गोरखा सैनिकों की वीरता की कहानियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: एक कहावत भी है दिव्या, अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है।
0: यह बात बताती है कि गोरखा सैनिकों का साहस कितना अद्भुत माना जाता था।
1: युद्ध के बाद लक्ष्मण को सेना ने संपूर्ण सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति ली। आज के युवाओं के लिए लक्ष्मण की कहानी बहुत ही बड़ी प्रेरणा है।
0: आज जब छोटी छोटी मुश्किलों में लोग हार मान लेते हैं तब उनका जीवन हमें संघर्ष करना सिखाता है।
1: उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
0: तो दोस्तों, देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है।

0: दोस्तों, और अब हम बात करेंगे संगीत की दुनिया के दो ऐसे सितारों की जिन्होंने अपनी अलग-अलग शैली से दुनिया भर के लोगों को दिलों में एक जगह बना दी।
1: बिल्कुल, एक तरफ है भारत के मशहूर पॉप और इंडी म्यूजिक आइकन रेमो फर्नांडिस, जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नया अंदाज दिया।
0: और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन एनरिक एग्लिसियास, जिनकी आवाज़ और रोमांटिक गानों ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया।
1: दोस्तों, संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। चाहे गोवा की मस्ती हो या स्पेनिश रोमांच, अच्छे संगीत की धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। रेमो फर्नांडिस और एनरिक इग्लेसियस दोनों अलग देशों और संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन दोनों ने अपने संगीत से लोगों को जोड़ने का काम किया है।
0: बिल्कुल दिव्या, एक कलाकार अपनी आवाज़ से सिर्फ गाने नहीं गाता बल्कि भावनाएं बांटता है।

0: रेमो फर्नांडिस ने भारतीय युवाओं के लिए एक नया म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट दिया, वहीं एनरिक एग्लिसियास ने रोमांटिक पॉप म्यूजिक को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया।
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं रेमो फर्नांडिस की। तो उनका जन्म गोवा में हुआ और उनका पूरा नाम लुइस रेमो डी मारिया बर्नार्ड फर्नांडिस है। गोवा की संस्कृति, वहाँ का संगीत और समुद्र किनारे की खुली जिंदगी, इन सब का असर उनके संगीत में साफ दिखाई देता है।
0: हाँ, और यही वजह है कि उनके गानों में एक अलग तरह की आज़ादी और ऊर्जा महसूस होती है। उन्होंने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी और कोंकणी भाषा में भी कई शानदार गाने गाए। उस समय भारत में पॉप म्यूज़िक उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन रेमो ने इस शैली को लोगों तक पहुंचाने का साहस किया।
1: बिल्कुल, रेमो फर्नांडिस की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने हमेशा भीड़ से अलग रास्ता चुना। जब लोग पारंपरिक फिल्मी संगीत सुन रहे थे, तब रेमो ने नए बीट्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ प्रयोग कर रहे थे।
0: बिल्कुल, उनके गानों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था बल्कि समाज के मुद्दों पर भी बातें होती थी। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संगीत को केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा। यही कारण है कि उनकी पहचान एक थिंकिंग म्यूजिशियन के रूप में भी बनी।
1: दोस्तों, अगर हम उनके लोकप्रिय गानों की बात करें तो द हम्मा हम्मा को शायद ही कोई भूल सकता है। यह गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हो रहता है।
0: और ख़ास बात यह है कि रेमो की आवाज़ में एक अलग ही जोश और स्टाइल था। वे मंच पर आते थे तो पूरा माहौल जीवंत हो जाता था। उनके गानों में गोवा की मस्ती, समुद्र की खुली हवा और युवाओं की आज़ादी महसूस होती थी।
1: इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया और कई सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखी। उसके अलावा उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2007 में भारत सरकार के द्वारा।
0: अब बात करते हैं एनरिक एग्लिसियास की, तो उस कलाकार की जिसे किंग ऑफ लैटिन पॉप भी कहा जाता है, एनरिक एग्लिसियास। एनरिक का जन्म स्पेन में हुआ और वे मशहूर गायक जूलियो एग्लिसियास के बेटे हैं।
1: लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पिता की पहचान का सहारा लेकर सफलता हासिल नहीं की। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खुद को साबित किया। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी असली पहचान तक छुपाई थी।
0: बिल्कुल, एनरिक ने शुरुआत छोटे स्तर से की। उन्होंने रिकॉर्ड कंपनियों को अपने गाने भेजे और धीरे धीरे लोगों ने उनकी आवाज़ को पसंद करना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही भावनात्मक गहराई थी।
1: और फिर आया वह दौर जब हीरो, एस्केप और बेबी आई लाइक इट जैसे गानों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। उनकी लोकप्रियता सिर्फ अंग्रेजी गानों तक सीमित नहीं रही बल्कि स्पेनिश गानों को भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई।
0: 2000 के दशक में शायद ही कोई ऐसा युवा रहा हो जिसने एनरिक एग्लिसियास के गाने न सुने हों। उनके रोमांटिक गाने लोगों के दिलों की आवाज़ बन गए थे।
1: बिल्कुल सही कहा, उनके गानों में प्यार, जुदाई, उम्मीद और भावनाओं का ऐसा मिश्रण होता था कि लोग खुद को उनसे जोड़ लेते थे। यही वजह है कि उनका संगीत हर पीढ़ी में लोकप्रिय बना रहा है।
0: दोस्तों, आज के समय में संगीत बहुत तेज़ी से बदल रहा है। नए कलाकार आ रहे हैं, लेकिन नई तकनीकें आ रही हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुराने नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल, रेमो फर्नांडिस और एनरिक इग्लेसियस ऐसे ही कलाकार हैं जिनके गाने आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने पहले होते थे।
0: और यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब उसका संगीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।

0: दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल सुरों और तालों का संगम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और हमारी भावना और हमारी आत्मा की पहचान भी है।
1: बिल्कुल दिव्या, हमारे देश की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत कलाकारों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने संगीत से समय को भी थाम लिया है। उनके सुर आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं।
0: कुछ कलाकार अपनी कला से सिर्फ मंच नहीं सजाते, बल्कि पूरी परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही दो महान संगीत साधकों की, जिनकी साधना और संपूर्णा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अमर बना दिया।
0: और एक तबले की अद्भुत तालों के जादूगर पंडित ज्ञान प्रकाश घोष,
1: और दूसरी ओर ठुमरी को नई पहचान देने वाली सुरों की महान साधिका विदुषी गिरिजा देवी। अब बात करते हैं सबसे पहले पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी की। तो इनका जन्म 8 मई 1909 को कोलकाता, बंगाल के एक बेहद संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था।
0: सही कहा हर्षित, फरुखाबाद घराने के वे ऐसे संगीत मार्तंड थे जिन्होंने हारमोनियम से संगीत की शुरुआत की और आगे चलकर तबला वादन के बेताज बादशाह बने।
1: इन्हें फरुखाबाद घराने का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1984 में पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों को प्राप्त किया।
0: उन्होंने

0: अनिंदो चटर्जी और पंडित अभिजीत बनर्जी जैसे महान कलाकारों को तैयार किया। उनका मानना था कि संगीत केवल ताल और बीट्स नहीं बल्कि एक भाषा है।
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि संगीत में सादगी और समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। 23 दिसंबर 1997 को यह महान कलाकार हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ताल आज भी जीवित है। ज्ञान प्रकाश जी की तालों के बाद अब समय होता है उस आवाज़ की जिसने बनारस की मिट्टी को आकाश जितनी ऊंचाई दी। लेकिन हम बात करेंगे एक प्यारे से गीत के बाद।

0: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे विदुषी गिरजा देवी के बारे में। सुरों की रानी और बनारस की शान विदुषी गिरजा देवी, जिन्हें दुनिया प्यार से अप्पा जी कहकर पुकारती है। ठुमरी शैली में उनके योगदान के लिए उन्हें क्वीन ऑफ ठुमरी से भी संबोधित किया जाता है।
1: दोस्तों, जब गिरजा देवी जी गाती थी तो ऐसा लगता था मानो गंगा की लहरें सुरों में ढल गई हो। अप्पा जी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। बनारस घराने की यह महान शान हमेशा अपने शहर और अपनी मिट्टी से जुड़ी रही।
0: उन्होंने ठुमरी, दादरा और चैती जैसी शास्त्रीय गायन शैलियों को ऐसा सम्मान दिलाया कि आज पूरी दुनिया में उनकी गूंज सुनाई देती है। उनका सम्मान और योगदान सचमुच अद्भुत था।
1: बिल्कुल दिव्या, उन्हें पद्मश्री मिला था 1972 में, पद्म भूषण मिला 1989 और फिर पद्म विभूषण 2016 में, जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उनके नाम रहा।
0: बिल्कुल, गिरजा जी कहा करती थी कि संगीत बिना भाव के अधूरा है। 24 अक्टूबर 2017 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी ठुमरी आज भी हर दिल को छू जाती है।
1: उनका पूरा जीवन संगीत की तपस्या था। संगीत सुनते रहिए और अपनी इस महान सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कीजिए।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं आज यानी 8 तारीख 8 मई के न्यू रिलीजेस पर। दादी की शादी थिएटर में प्रदर्शित होगी। आशीष आर मोहन द्वारा निर्देशित एक पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा, जिसमें रिद्धिमा कपूर, साहनी ने निवेदन किया है और उनके साथ नीतू कपूर और कपिल शर्मा भी हैं।
1: इसके बाद है मैं हीरो नहीं हूँ, थिएट्रिकल मूवी है। आदित्य कृपलानी द्वारा निर्देशित एक नाटक जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सतरूपा है।
0: एक और है जो कि OTT पर रिलीज होगी, लुक्खे। रैपर किंग अभिनीति एक संगीतमय एक्शन ड्रामा जिसकी कहानी चंडीगढ़ के अंडरग्राउंड संगीत जगत पर है आधारित है। अमेज़न प्राइम पर आप देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बात थी न्यू रिलीज मूवीज के बारे में। तो अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की। तो दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं होता, बल्कि एक संघर्ष, अनुशासन और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून की कहानी भी होती है।
0: बिल्कुल दिव्या, हमारे देश ने ऐसे कई खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने हौसले और मेहनत से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है।
1: कुछ खिलाड़ी मैदान में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ अपनी रफ्तार से इतिहास लिख देते हैं।
0: और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही दो महान खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने खेल से करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया है।
1: एक और भारतीय हॉकी की मजबूत दीवार PR श्रीजेश,
0: और दूसरी ओर भारतीय एथलेटिक्स की तेज रफ्तार पहचान शाइनी अब्राहम विल्सन।
1: तो दोस्तों बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने गोल पोस्ट के सामने खड़े होकर विरोधियों की हर उम्मीद को रोक दिया।
0: दोस्तों, पाठ रविंदन श्रीजेश यानी हमारे प्यारे श्रीजेश, इनका जन्म 8 मई 1978 को केरल के कोच्चि में हुआ था।
1: केरल के एक किसान परिवार से निकलकर भारतीय हॉकी टीम की दीवार बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
0: श्रीजेश ने भारत को टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक यानी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शानदार बचाव कला ने पूरे देश को गर्व से भर दिया।
1: इसी अदम्य जज्बे और योगदान के लिए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, पद्मश्री 2017 और वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर जैसे सम्मान प्राप्त हुए।
0: उन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और हाल ही में पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान हर मुश्किल को रोक सकता है।
1: श्रीजेश का जज्बा हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। सचमुच में वे एक खिलाड़ी हैं, एक महान खिलाड़ी हैं।

0: श्रीजेश के जज्बे के बाद हम चलते हैं हॉकी के मैदान पर। हॉकी के मैदान पर दीवार को देखने के बाद अब समय है उस रफ्तार की बात करने की जिसमें एशियन गेम्स में भारत का परचम लहराया।
1: एक ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया, मिडिल डिस्टेंस रनिंग की रानी शाइनी अब्राम विल्सन, ट्रैक की रानी और नए रास्तों की खोज शाइनी अब्राम विल्सन।
0: दोस्तों, जब भी भारतीय एथलेटिक्स की बात होती है तो शाइनी अब्राम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। शाइनी जी का जन्म 8 मई 1965 को केरल के थोडुपुझा में हुआ था। वे भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा।
1: उन्होंने 800 मीटर दौड़ में जो रफ्तार दिखाई उसने एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया जो 14 वर्ष तक कायम रहा।
0: दोस्तों, उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला 1984 में और पद्मश्री 1998 से सम्मानित किया गया। साथ ही 1991 की एशियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
1: शाइनी जी ने यह साबित किया कि महिलाओं के लिए खेल के मैदान में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। वे एक ऐसी प्रेरणादायक खिलाड़ी थीं जिन्होंने 1992 बर्सिलोना ओलंपिक में भारत का ध्वज थामा था।
0: उनका सफ़र हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने से डरती है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, सिर्फ दौड़िए मत बल्कि अपने सपनों को उड़ान दीजिए।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। वर्ष 1360 यानी आज ही के दिन को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ब्रेटिकनी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल के युद्ध के पहले चरण का अंत हुआ। यह युद्ध सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि सत्ता और सम्मान की लड़ाई भी थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था।
0: 8 मई 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरल सागर का युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध अमेरिका और जापान के बीच लड़ा गया था और इसे इतिहास की पहली

0: ऐसी समुद्री लड़ाई माना जाता है जिसमें दोनों देशों के जहाज एक दूसरे को सीधे देख भी नहीं पाए।
1: दोस्तों, 1945 विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। इसी दिन नाजी जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस दिन को विक्ट्री ऑफ यूरोप डे यानी वीई डे के रूप में मनाया जाता है।
0: 1970 को दुनिया के मशहूर बैंड द बिटल्स ने अपना आखिरी एल्बम लेट इट बी रिलीज़ किया। बिटल्स ने सिर्फ एक म्यूज़िक बैंड नहीं था बल्कि युवाओं की सोच और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। निफ्टी 50 आज लगभग 150 अंकों की गिरावट के साथ 24,176 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई सेंसेक्स करीब 516 अंक टूटकर 77,328 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा दबाव बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में दिखाई देने को मिला है।
0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं था आपका रेडियो दोस्त हर्षित और मेरे साथ थे
1: दिव्या।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1,125 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। श्रोताओं, अगर हमसे कोई पूछे कि हमें क्या चाहिए तो हम तो बस आपसे यही कहेंगे कि हमें आपका साथ चाहिए।

गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास दिलाता ये बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियां अपनी रुचियों और निखारने का ये जो बहुत ही अच्छा समय होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी समय मिलता है कुछ तो सीखने का जो समय होता है वो अवकाश के समय में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो छुट्टियाँ अगर आपके पास में है ना, तो इसका उपयोग आप रचनात्मक और आत्मविश्वासी करने के लिए अलग अलग स्किल्स का डेवलपमेंट अपने आप में करके आप कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और मनोरंजन के लिए तो हम हैं ही।

दोस्तों, वैसे तो हमें छुट्टियां शुरू होने से पहले ही योजनाएं बना लेनी चाहिए कि हम क्या नया सीखेंगे और हमारी प्लानिंग आगे के लिए क्या रहेगी। उससे होता क्या है ना कि समय जो होता है उसकी बर्बादी नहीं होती है और हमारा काम जो होता है वो गुणवत्तापूर्ण भी हो सकता है। और आजकल जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और वर्कशॉप जो चल रही हैं तो हमें उनका भी लाभ उठाना चाहिए। अपने दोस्तों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करें ताकि सीखने का मज़ा और भी दोगुना हो जाए।

अपनी रुचि के अनुसार श्रोता गिटार, कीबोर्ड या नृत्य की कोई विधा, जैसे कि क्लासिकल, हिप हॉप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं संगीत के अंदर भी, वोकल भी हो सकती है, डांस भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप इन सब को सीख सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं उसके लिए भी, ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए भी आप अभिनय का अभ्यास कर सकते हैं, कोई कार्यशाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी से जुड़कर अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं।

0: श्रोताओं, आप अपने समय का सिर्फ मस्ती तक ही सीमित न रखें, उसको अपने हुनर को बढ़ाकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। और अपने हुनर को आप बढ़ाएंगे तो मस्ती तो हर काम में हो ही जाती है, और मस्ती के साथ हर काम को करेंगे तो हर काम में मस्ती हो जाती है, यानी कि मस्ती तो है ही। किसी भी काम को करो, पढ़ने की रुचि है तो आप पढ़ने वाला काम भी कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर केंद्र से और सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर 6:40 पर जिले की चिट्ठी और उसके बाद होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक

0: राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
3: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है।

0: जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
2: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भांवरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल ने बताया कि ये अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा और पश्चिमी

राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी आईवीएफ सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे आईवीएफ सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि एआरटीवी नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा दो दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रा तुणी हलका में जबरदस्त गर्मी, दूजा हलका में कठे कठे बरसात रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, किसाना ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला माए आज हैदराबाद माए राखी जिया निवेशक सम्मेलन माए आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारां रो मोटो केंद्र बताता था का कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था का कहो के सरकार किसाना ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराउनो तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशका और उद्यमियों ने 23-25 मई ताई जयपुर माई फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन माई शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इनु पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ही बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माए संभावित ई परीक्षा माए पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोन्यू पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवारा ने अर्जियां माए सुधार सारू 16-30 मई ताई रो टेम दियो चियो है। इन माए मोबाइल नंबर, ईमेल और चिट्ठी पत्री रो पतो अपडेट करियो जा सकेला। बदलाव पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन रातेत केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी फैला। कोई बदलाव नहीं करण री सूरत माई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवनो और अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी फैला। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल माए जापावली लुगाइया री मौत रा मामला री जांच सारू समिति बनाती रीची है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आ जानकारी दीनी। इन बीच अस्पताल प्रशासन जापावाली 4 महिलाओं री किडनी फेल हो जावन री आज पुष्टि कर दीनी। आरो डायलिसिस करियो चाचियो है। राज्य रा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर माए साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो। औषधि नियंत्रण विभाग री ओर दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है। इस बीच जयपुर बुलाई चिया डॉक्टरां री टीम ही मरीजा रा इलाज रा काम माथा नजर रख रही है। एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य माए तुरंत रोक लगा दीनी है। ध्यान

0: जोग है कई घटना माए हाल ताई जापा वाली दो लुगाइया री मौत वे की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मनु काम कर रही है। वे आज जयपुर माए महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागर राखी जी मीटिंग माए बोल रही ही। दिया कुमारी पोषाहार वितरण माए साफ गोई और साफ सफाई तय करण माथे जोर देता थका कहो कि इनु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साचो भेला। देश में एक घरेलू रसोई गैस रिपूर्ति आसानियों करी जा रही है और कठे हुई पूर्ति में कमीरा कोई समाचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली में कहो कि सरकार ग्राहकान गैस री कमियों बचावन और इनरा मोल में थरता राखण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वे बतायो कि मार्च महीनाओं हाल ताई 6 लाख बत्ता PNG कनेक्शन चालू कर दिया गया है।
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में आए काल इन साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला। इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर सगली अदालतां उपभोक्ता मंचां और राजस्व अदालतां में गाड़ियां रा चालान चेक बाउंस वेवन बैंक लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करो जावेला। सवाई माधोपुर जिला में लोक अदालत सारू 10 बेंच बनाई ची है। जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी में 2 बेंच सुनवाई करेला। इनके अलावा बौनली खंडार बामनवास और चौथ का बरवाड़ा में आई 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला। झुंझुनू जिला में लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत में मामला रो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो जावे है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला। आज कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी में भी भाजपा विधायक दल री मीटिंग में वाना दल रा नेता चुनी चिया। श्री अधिकारी बंगाल में भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला। पश्चिम बंगाल में पहली दफा भाजपा रा राज में मंत्रिमंडल में शामिल करया जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ दिराई जावेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में राज्य में आई जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। सवाई माधोपुर में आयुर्वेद विभाग री ओर 50 दिन रो काउंटडाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रहा है। वठे पहली वाला सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान में लोगों सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटा और पाली जिलारा कोलीवाड़ा में आई स्कूली विद्यार्थियों सारू योग शिविर लगाई चिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने बलवन खुर्द माए शिविर लगाई चिया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल बतायो कि शिविरा माय चलती फिरती मशीनाओं छाती रा एक्सरे खून माय शुगर और ब्लड प्रेशर री जांच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गांवा माय 12 मई ताई चालेला। रबे मौसम प्रदेश माय आज घनखर ठोणा मौसम सूखो रहो। राज्य रा आतुणी हल्का माय जबरदस्त गर्मी और लू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। हाना बाड़मेर खबर नवीस बतायो कि जिला में पड़ रही जोरदार गर्मी का कारण जिंदगी माथा

0: असर पड़ियो है और अस्पताला में लूरा मरीजों का इलाज सारू खास व्यवस्था करी ची है।
1: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।

0: विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: बालोतरा जिला में जसोलरी लड़कियारी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरिया जागरूकता रैली निकाली। रैली में नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकार माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओरू एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेत छठो युवा संगम राख्यो चार्यो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रा नौजवाना माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगों बीच संपर्क मजबूत बनावनु है। इन कार्यक्रम रा तेत देश भर चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआ री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रो दौरो कर रहा है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माय चुनी चिया है। आहोर श्रीलंका माय 25 हूँ 28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माय राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रह्या। आखिर माय खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रा तुनी हलका माए जबरदस्त गर्मी दूजा हलका माए कठे कठे बरसात रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम ममता भैसा, राम राम।
1: राम राम सरजू भैसा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होना वाला हगला किसान भाई बहना ने आपानो
2: राम राम सा।
0: देखो सा ममता भैसा, कार्यक्रम रो टेम भी हो और खेती और घर कार्यक्रम में चौपाल रिवात महीने आपने किसान भाई लोग जो है वे हंगले जना है, जो वे भी देखो समय निकालना नी प्रोग्राम ने होनवार वास्ते तैयार हो गया है सा। अणि में देखो मांगू भाई, रत्ना भाई, लूणा भाई, हंगले भाई जो है सब भेड़ा हो गया है। और हाथे हाथे जो अपनी बहना है ये रत्नी भाई, मगनी भाई, हंगली बहना जो है वे भी देखो सब बेगी है सा। और देख रही है कि आज जो है माने खेती और घर कार्यक्रम में चौपाल रिवात में माने बहना जो है माने बातें कई कई जानकारियां लेने आई है सा।
1: बिल्कुल सा। देखो सरजू भाई सा, चौपाल रिवात भी बतावा किसान भाई ने लारे लारे आप मौसम री जानकारी भी दा और आप अन्य अपने जो भी सरकार योजना चलाई राखी वन्य बारे में भी जानकारी करावा और आप बाता चीता रे बातें आप विशेषज्ञ ने भी अपने कार्यक्रम रे माध्यम किसान भाई ने जानकारी करावा सा। तो देखो सा, आज चौपाल री बात में आप किसान भाई ने जानकारी करावा कि सब्जी री जो फसल है वनो किसान भाई संरक्षण किस तरह कर सके सा।
0: बिल्कुल सा ममता भाई सा, देखो जटे सब्जी फसल और संरक्षण री बात आवे तो अपना किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि जो सब्जी फसल संरक्षण है वन्य तहत कीट है, रोग है, चूहा है, खरपतवार है, अणा सबनी जितनी भी फसल है जो अपने खेता महीने आपा बोवा वणा ने वंचावारी बात है और वणा ने वंचाई ने पचवनारी पैदावार सुरक्षित करवारी बात है। तो अणीरे महीने जो है कि आपा देख सका कि एकीकृत कीट जो प्रबंधन है मने रसायन संतुलित उपयोग जो है आपा बिल्कुल हाउ तरीकों करी सका सा।
1: लारे लारे देखो आपा जैविक नियंत्रण भी करा जैसे कि गेंदा लगानो है, नेट हाउस

0: आणो है, अणि में सब्जियां सुरक्षित रहवे। लारे लारे पोली हाउस जैसी तकनीका भी शामिल है जो पौधा ने बीमारियों भी बचावे और पौधा रो संरक्षण भी करे है सा।
1: देखो सा ममता भाई सा, बहुत ही बढ़िया जानकारी लेने आया हाँ अपने किसान भाई बहन रे वास्ते। तो अणिरे महीने देखो जो यहाँ पर सब्जी फसल संरक्षण की बात बताई रहा हाँ, तो बनी रे उपाय जो है वे उपाय भी आज आप किसान भाई बहना ने बतावा कि देखो जैविक नियंत्रण जो है हानिकारक जितना भी कीट है बना ने नियंत्रित करवारे वास्ते मित्र कीट और जैविक कीटनाशक जो है बना रो उपयोग आपने करनो छावे सा।
0: बिल्कुल सा, देखो गेंदा जैसी फसल की आप बात कर रहा तो मुख्य फसल रे जो आसपास है वने लगाऊ सूत्रकर्मी और हानिकारक जो कीड़ा है अणी बचावे वे। लारे लारे आप यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण की बात करा तो अणी में देखो नेटिंग शामिल है। अणी में कही हुए कि जालीदार जो कवर है वनो उपयोग करे और पत्तियां ने खावा वाला जो इलिया है वनो बचावे है सा। लारे लारे देखो मल्चिंग री बात करा तो मिट्टी में नमी बनाए रखनो और खरपतवार ने दबाने वाते मल्च उपयोग भी करनो है सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो ममता भाई सा प्रकाश प्रपंच री भी अणी में बात आवे कि रात रा महीने जो हानिकारक जितना भी कीट है वणा ने आकर्षित करी ने वणा ने नष्ट करवार वास्ते एक प्रकाश प्रपंच लगायो जावे। जण्यू कही वे कीट जो है जितना भी नष्ट वही जावे और आपणी फसलों वे दूर वही जावे है और फसलना जो है बर्बाद वे बच जावे। तो अणी तरीकों जो है संरक्षित खेती है कि पोली हाउस है, नेट हाउस है या वॉक इन टनल है, तो अन्नी भी जानकारी अणी रे महीने आगे जारी रखांगा। भण्यू पहला आपा आपणा किसान भाई बहना ने एक राजस्थानी गीत होणी दासा।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो देखो सरजू भाई सा आपा प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में सुनाए और लारे लारे आपा संदेश भी सुनाए सा। और आपा किसान भाई ने जानकारी कराई रहा कि सब्जी री जो फसल है वनो संरक्षण किसान भाई किस तरह कर सके। तो देखो संरक्षित आपा खेती री बात करा आणी में, तो जो संरक्षित खेती है वणी में पोली हाउस, नेट हाउस या वॉकिंग टनल जैसी जो खेती करवा में कई वे कि बे मौसम जो सब्जियां है जैसे कि खीरा वेगियो, टमाटर वेगियो, ये सब सुरक्षित रहे और अनारी जो पैदावार है वह भी बड़े है सा।
2: बिल्कुल हाची बात कह रहे हो सा ममता भाई सा। देखोगी रासायनिक नियंत्रण री बात करा तो अणी में कही है कि रोग या कीट रो प्रकोप वेवा पे सही मात्रा में कीटनाशक और फफूंद नाशक रो उपयोग अगर करी लेवे किसान भाई लोग तो वे जई ने जो हाउ तरीकों जो आपणी फसल है वा ले सके। लेकिन अंतिम कटाइयों थोड़ा दिन पहला जो है अगर अनो प्रयोग करेगा तो फसला ने नुकसान वेगा आणी वास्ते अनो प्रयोग पहला करनो है और फसला ने वंचावारे वास्ते रासायनिक कीट जो है वणारे नियंत्रण रे वास्ते रासायनिक नियंत्रण करनो बहुत जरूरी है सा।
1: बिल्कुल सा लारे लारे आपा मिट्टी रे उपचार री बात करा तो फसल बोवंग पहली मिट्टी में जो फफूंद नाशी है वन्ने मिले ने रोगारो जो फेस्ट फसला है वन्ने वाते रोकनो है। और फसल कटाई रे बाद आपा संरक्षण री बात करा तो देखो साग भाजी खराब वेवा पे वणा बचावा रे वाते कम तापमान वाला जे स्थान है वे आपणे चुनना है। सब्जी री जो फसल है वणी में कीट और रोग और खरपतवारों बचावर वाते स्वस्थ उत्पादन प्राप्त करनो ही आपनो सब बड़ो है जो सब्जी रो फसल संरक्षण है सा।
2: देखो सा बेमौसमी और उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां जो है वणारे वास्ते पोली हाउस शेड नेट रो मचान विधि अपनानी जरूर चावे जड़ियों कई कीटों सुरक्षा आपा प्रदान करी सका। हाँ लारे लारे जटे खरपतवार प्रबंधन री बात करा तो किसान भाई बहन ने बतावा ममता भाई सा कि देखो खेत ने साफ राखनो है और नियमित रूपों खरपतवार जो है वो समय समय पे हर सप्ताह में हटा तो रेणो है। जण्यू कही वेगा कि खेत रे महीने खरपतवार जमा नहीं वेगा और अपनी फसल जो है बने पूरी तरीके हवा मिल सकेगा। वण्यू कही अपनी फसल है जो अब बहुत ही व्यवस्थित रूप महीने वेगा तो वण्यू अपने पैदावार भी हऊ तरी करी वेगा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो फसल ने स्वस्थ राखवारे वाते नियमित रूप खेतरो निरीक्षण करनो आवश्यक है। और प्रमुख जे कीट है और वने नियंत्रण री बात करा तो अणी में लागवा वाला आप देखा सफेद मक्खी है, पीलो स्टिकी है, ट्रेप है। आपा अन्य सबरे वाते ट्रेप रो उपयोग कर सका आना कीट रे वाते। और तनो और फल छेदक जो कीट है वन्य वाते जो प्रभावित पौधा है वना ने हटाई देनो और नीम आधारित जो कीटनाशक है अनो छिड़काव करनो चावे सा।
2: बिल्कुल सा ममता भाई सा। देखो अत्री बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है किसान भाई बहन ने आपा करे कि सब्जी रो फसल संरक्षण कणी तरीकों किसान भाई लोग कर सके सा। तो अत्री बढ़िया बढ़िया जानकारी ममता भाई सा आपा ले ना आवा सा।
1: हाँ
2: तो
1: सा?
2: देखो जानकारी रे लारे किसान भाई लोग अगर आपा मनोरंजन भी कराई दा तो आनी प्रोग्राम में महीने चार चांद लाग जा सा। तो आप के वो तो आपाना किसान भाई लोग ने कि बहुत ही प्यारो सो सुंदर सो राजस्थानी गीत हुणाई ने बना रे कार्यक्रम री शोभा बढ़ावा सा।
1: बिल्कुल सा।

0: तो ममता भाई सा,
1: हाँ सा,
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा किसान भाई बहना ने।
1: बिल्कुल
0: और अभी देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता तक जानकारी करावा मौसम विभाग री। तो देखो सा ममता भाई सा की मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे आगामी दना में शुष्क मौसम और हल्का बादल छाया रेवारी संभावना है सा। हवारी गतिरी जटे बात करा तो 9-18 किलोमीटर रे हिसाबो प्रति घंटा रे वेग उचालेगा और जटे उत्तर पश्चिमी तक चालवारी संभावना है सा। अनेस लारे जटे आपा अधिकतम तापमान री बात करा तो 38-41 और न्यूनतम तापमान री बात करा तो 22-25 डिग्री रे लारे लारे और रेवारे हाथे सापक्ष आर्द्रता री बात करा तो 11-16 रेवारी संभावना है। जनेश लारे आपा न्यूनतम तापमान री बात करा तो 26-57% रेवारी संभावना है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो सरजू भाई सा, सामान्य फसला री जटे आपा बात करा तो किसान भाई ने सलाह दीदी जावे कि वे मिट्टी रो परीक्षण करवा वारे वास्ते 30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी रा नमूना इकट्ठा करीने प्रमाणित एजेंसियों मिट्टी रो परीक्षण करावे। लारे लारे यहाँ पर गेहूं री फसल री बात करा तो वन्ने अनाज भंडारण में राखवों पेली भंडार घर री अच्छी तरीकों सफाई कर ले और अनाज ने अच्छी तरीकों किसान भाई सुखाई ले और कूड़ो कचरो ने जलाई या पचे दबाई नष्ट कर दे। और दाणा में नमी री बात करा तो 12% ज़्यादा नहीं वेणी चावे। भंडार घर जो छत है और दीवारा और फर्श पे एक भाग मेलो थी 50 cc ने 100 भाग पानी में मिलाई ने छिड़काव करना चाहे और पुरानी बोरियां ने प्रयोग करनी पड़े तो वनों एक भाग मेला थियन और 100 भाग पानी रे गोल में 10 मिनट तक भिगोई ने छाया में सुखाई देना चाहे।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहे हो सर। अनेस लारे जटे गेहूं री बात करा तो अनाज ने भंडारण में राखवो पेला भंडार घर री हाउ तरीको सफाई कर लेनी है। और अणी में अगर आपा अबार ग्रीष्मकालीन समय चाल रही है में मूंग री फसल री आपा बात करा तो ग्रीष्मकालीन मूंग री फसल में फूल आवारी अवस्था में अणी सिंचाई कर देनी है सा। अनेस लारे जटे आपा कपास री बात करा तो अणी सप्ताह रे महीने किसान कपास री बुवाई करवारे वास्ते खेता ने तैयार करी लेना चाहे। और लारे लारे जटे गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज है वे कणी भी विश्वसनीय स्रोत हूँ खरीदना है सा।
1: तो देखो सरजू भाई सा, या तो भी मौसम री जानकारी
0: हाँ
1: और अबे आप कहो तो देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में और सुनावा सा।
0: हाँ सा।

0: तो ममता भाई सा,
1: हाँ सा,
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत सुनायो सा किसान भाई बहना ने, और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता तक का जानकारी अबे किसान भाई बहना ने आपा करावा कि बागवानी मिशन कई है अणी बारी में आपा जानकारी करावा सा। तो देखो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है अबे एकीकृत बागवानी विकास मिशन रो हिस्सो बनी गयो है सा, और भारत सरकार द्वारा 2026 में शुरू की दी गई एक प्रमुख योजना है या बागवानी मिशन।
1: बिल्कुल सा, ने उद्देश्य की बात करा तो फल सब्जी फूल मसाला मशरूम और नारियल जैसी जे बागवानी फसला है वने समग्र विकास ने बढ़ावो देनो है सा। लारे लारे आधुनिक तकनीक ने अपनाई ने उत्पादन ने बढ़ानो और किसान भाईरी जो आए है वणी में वृद्धि करनो है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा ममता भाई सा। देखो अणी रे लाभ री बात करा तो किसान ने नई बागवानी फसला रे रोपण और पुरानी फसला ने बदलवारे वास्ते सब्सिडी भी मिलिया करे है सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो अणी में आपा देखा कि फूलारी जो खेती है वणी पे सब्सिडी, जैसे कि राजस्थान में विभिन्न जो उद्यानिक फसला है वणी पे सहायता मिले। लारे लारे आपा देखा औषधीय पौधा और मशरूम री जो खेती है वन्य वाते भी सहायता मिले। और अणी मुख्य विशेषता री आपा बात करा सरजू भाई सा, तो अना उद्देश्य और विशेषता में क्षेत्र आधारित जो रणनीति है, उच्च गुणवत्ता वाला जे पौधा है जैसे कि आधुनिक तकनीक, फसल री कटाई रे बाद वनो प्रबंधन करनो, अणी में भी वित्तीय सहायता मिले है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा। देखो ये जो है कि बागवानी मिशन योजना री बात हुई सा, और देखो सा कि आपा एक जानकारी अन्य और करावांगा, वणी पहला एक किसान भाई बहना ने राजस्थानी गीत और होनावा सा।

0: तो ममता भाई सा
1: हाँ सा
0: देखो सा कि बहुत ही प्यारो सा राजस्थानी गीत जो है अपना किसान भाई बहना ने हुनायो सा। और अभी देखो सा कि कार्यक्रम महीने आप आगे चलना और देखो किसान भाई बहना ने बतावा कि देखो जो आप एक बागवानी मिशन री बात करी रहा हाँ, तो अनिल महीने देखो बागवानी रे महीने सिंचाई री बात भी आवे है। तो अनिल रे महीने देखो बागवानी फल सब्जी फूल री खेती अणि में सही सिंचाई फसल री गुणवत्ता और पैदावार बढ़ावार वास्ते बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आधुनिक तकनीक रो उपयोग करीने पानी री बचत और बेहतर उत्पादन निश्चित करियो जाई सके सा।
1: बिल्कुल सा। और अणि में देखो बागवानी में सिंचाई रा अगर मुख्य तरीका री बात करा तो देखो अणि में आवे ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई या जो विधि है वह बागवानी रे वाते सबू अच्छी मानी जावे। अणि में कही वे कि पानी सीधो पौधा री जड़ा रे पास में टपके है और फलदार जे वृक्ष है जैसे कि आम वेग्यो, अमरूद वेग्यो, नींबू वेग्या और सब्जियां रे वाते यो बहुत ही बढ़िया है। पानी री अणि में 50% तक बचत वे सके सा। और अभी अणि में स्प्रिंकलर आप सिंचाई की बात करा तो अन्य देखो आप फवारा सिंचाई भी कहवा हाँ या विधि फूल और जे सब्जियां है वनार वाते अच्छी मानी जावे घनी जे सब्जियां है। और अणि में पानी री जो आप देखा कि बारिश की तरफ में अणि पे छिड़काव करे चुनी पौधा ने ठंडक भी मिलती रहे है सा।
0: बिल्कुल अच्छी बात कह रहा हो सा ममता भाई सा। देखो अणि रे महीने बड़ा बागाना रे महीने कम समय में बहुत ही अधिक सिंचाई रे वास्ते भी उपयोगी है क्योंकि यह रेन गन है। और बागवानी सिंचाई रे वास्ते देखो पौधा ने सुबह या शाम रे समय पानी देनो सबू अच्छो वेवे है। मिट्टी रे प्रकार और मौसम रे अनुसार पानी री मात्रा निर्धारित करनी है। और मिट्टी री सतह रे बजाय जो जड़ा है वना जड़ा री गहराई तक पानी पहुँचाना तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है सा। देखो सा कि बहुत ही बढ़िया यह जानकारी दीदी सा आपा और अणि रे महीने आगे और जानकारी करावा सा।
1: बिल्कुल सा। अणि में बात करा आपा प्रभावी सिंचाई रे आपा तरीका अणि में एक और से वे है तरीको ड्रेसिंग सिंचाई या कई वे की जो साग भाजी है जैसे लेट्यूस वेगियो, स्वीट चार्ट वेगियो वणा रे वाते अणि में खाद रे लारे लारे मिट्टी में नमी या वणाए थकी राखे है। लारे लारे आपा प्रभावी सिंचाई रे और तरीका री बात करा तो अणि में कई वे की टेम पे आपा देखा सिंचाई सुबह या पचे शाम में करनी चाहे ताकि कई वे की पानी रो जो वाष्पीकरण है वो कम वे। लारे लारे मिट्टी रा प्रबंधन री बात करा तो भारी मिट्टी में कम और रेतीली मिट्टी में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़े है। लारे लारे आपा बागवानी सिंचाई में फायदा री बात करा तो पैदावार में वृद्धि और सटीक सिंचाई फसल री जो पैदावार है उनमें 20% तक वृद्धि वे सके सा।
0: देखो सा ममता भाई सा जटे पानी री वंचत री बात करी ना तो देखो पारंपरिक सिंचाई री तुलना में पानी री खपत कम वेवे है। तो पौधा ने बेहतर स्वास्थ्य वास्ते सीधा जड़ा में पानी मिलतो रहेगा तो पौधा जो है वे दन पे दन स्वस्थ वेता जाएगा और हरिया भरिया रहेगा सा।
1: और देखो खरपतवार में कमी री बात करा तो केवल पौधा रे पास ही पानी दियो जावे अणि कही वे कि बाकी खेत में जो खरपतवार है वे कम उगे। और आपने देश में बागवानी जे फसला है वणा रे वाते ड्रीप और सिस्टम रा उपयोग ने बढ़ावा देवा रे वाते सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रे तहत सब्सिडी भी प्रदान करे है। कुछ राज्य में आपा देखा बागवानी जे फसला है वणी में प्रतिकूल मौसम रे कारण वे वालो जो नुकसान है वणी में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी लागू वे है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कह रहा सा ममता भाई सा। देखो अपना किसान भाई बहना ने और एक राजस्थानी गीत होना ही नवनारो मनोरंजन करावा सा।
1: हाँ सा।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो देखो सरजू भाई साहब कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत सुनाए और लाल लारे आपा संदेश भी सुनाए सा। और देखो अब कार्यक्रम में किसान भाई ने जानकारी करावा कीट प्रबंधन कई वैसा। तो देखो कीट प्रबंधन फसला ने नुकसान पहुंचा वाला जो कीट है वना ने वैज्ञानिक जैविक और आर्थिक रूप में सुरक्षित तरीका नियंत्रण करार वाते एक या प्रक्रिया है जणी में एकीकृत जो कीट प्रबंधन है वो सब प्रभावी तरीको है सा।
3: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा ममता भाई सा। देखो या रसायन रे उपयोग ने कम करीने कम करता तका फसल री रक्षा पर्यावरण संरक्षण किसान रे मुनाफा ने बढ़ावा पे केंद्रित है सा।
2: और कीट प्रबंधन का प्रमुख तरीका यहाँ पर बात करना तो अणी में शस्य नियंत्रण वे फसल चक्र अपनाणो प्रतिरोधी जो बीज है वनारो प्रयोग करनो बुवाई रे टेम पे बदलाव और खरपतवार ने हटानो है सा।
3: बिल्कुल सा। यांत्रिक भौतिक नियंत्रण कीटा ने हाथ तो चूनो फेरोमोन ट्रैप और प्रकाश प्रपंच रो उपयोग करनो लारे लारे जैविक नियंत्रण करनो जिस कर की मित्र कीट जो है वनारो उपयोग करीने वना ने हानिकारक कीटा ने खाई लेवे तो वे बण्यू भी जो है वंची जावे है सा।
2: अणी में आपा रासायनिक नियंत्रण री बात करा तो रसायन रो जो उपयोग है वणी में अति विकल्प रूप में आपा देखा आवश्यकता अनुसार इस करनो। और एकीकृत कीट प्रबंधन रे लाभ री बात करा तो ये देखो पर्यावरण रे अनुकूल वेवे जणी में रसायन ने कम उपयोग पर्यावरण ने सुरक्षित राखी सका सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो सा ममता भाई सा कम लागत अधिक मुनाफो अनावश्यक कीटनाशका पे खर्च कम वेवे है। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो मानव स्वास्थ्य के वास्ते हानिकारक रसायनों बचत करना है सा।
2: बिल्कुल सा। और कीटारे प्रबंधन में आपा जैविक और यांत्रिक तरीका अपनाई ने रसायन जो प्रयोग है वणी आपा ज्यादा टिकाऊ वी सके सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो सा कि आज जो है ममता भाई सा 8 मई है और आज जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस है तो 8 महीने विश्व स्तर पे मुख्य रूप विश्व रेड क्रॉस दिवस मनायो जावे है। यो दिन रेड क्रॉस रे संस्थापक हेनरी डुनेट री जयंती रे रूप में मनायो जावे है जो मानवता स्वयं सेवा रे प्रति समर्पित है। अने अलावा अणी दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनायो जावे है सा।
2: बिल्कुल सा। और विश्व थैलेसीमिया दिवस री बात करा तो यो दिन थैलेसीमिया जे प्रभावित मरीज है वनारे प्रति जागरूकता फैलाणो और समाज में वनारो जो बेहतर जीवन है वन्ने वाते समर्पित है सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो कि अणिरे महीने जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है तो यो आज अणी दनु प्रभावित मरीज

0: तो ममता भाई सा,
1: हाँ सा,
0: देखो सा आज खेती और घर कार्यक्रम में घना हारा तो राजस्थानी गीत सुनाया सा, घना हारा संदेश सुनाया सा और लारे लारे अथरी बढ़िया बढ़िया जानकारियां दीदी सा आपा। और देखो सा कि किसान भाई बहन नारे लारे आपने थोड़ी देर रेवारो मन तो और करी रियो है सा ममता भाई सा, पर देखो घड़ी री आड़ी नाला तो आनी कार्यक्रम आपने चालवारो टेम वेग्यो है सा, तो आप केवो तो आनी कार्यक्रम विदा लेवा और चाला सा।
1: बिल्कुल, जय जवान
0: जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अब फिल्म संगीत।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

साडा हक एथे रख। अगला गीत ओम शांति ओम फिल्म से सुनवा रहे हैं, सुखविंदर सिंह की आवाज़ है, विशाल शेखर का संगीत है।

इश्क मलंग है। अगला गीत तेरे नाम फिल्म से अलका, उदित नारायण, कमाल खान और के किशान की आवाजें हैं। हिमेश रेशमिया का संगीत है।

अगला बेहतरीन गीत बॉर्डर फिल्म, बॉर्डर 2 फिल्म से हमने चुना है, सुखविंदर सिंह की आवाज है, मिथुन का संगीत।

एक आखिरी गीत और आपको सुनवा रहे हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन। इस फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज है, सोहेल सेन का संगीत है। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने।

0: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, जहां से सुनेंगे पहले समाचार संध्या और उसके बाद 9 बजे News@9। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल

0: मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ के प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में

0: महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।

चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण

सी के आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अशोक खोसला की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रागश्री। कलाकार हैं एम वेंकटेश कुमार।

श्रोताओं, रागश्री का गायन समय सायकालीन यानी कि सूर्यास्त की बेला माना जाता है। ये दिन का अंतिम प्रहर सूर्यास्त के समय का होता है। रागश्री के बारे में कुछ जानकारी हम आपको बता दें। इसमें पूर्वी थाट का प्रयोग होता है। जाति आड़व संपूर्ण, आरोह में 5, अवरोह में 7 स्वर होते हैं। वादी स्वर ऋषभ रे, संवादी स्वर पंचम प, प्रकृति इसकी गंभीर और संधि प्रकाश राग के रूप में है। इसमें कोमल रे और तीव्र म का प्रयोग होता है। यह राग शाम के समय गाए जाने वाले अत्यंत प्रभावशाली रागों में से एक है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में रागश्री। कलाकार थे एम वेंकटेश कुमार। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। रात्रि की 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत

फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। ये गीत है हंगामा फिल्म से शान और साधना।

फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। ये गीत है हंगामा फिल्म से। शान और साधना सरगम की आवाजें हैं, संगीत नदीम श्रवण का है।

लीजिए अब सुनिए प्रेम रोग। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वास्तव में मोहब्बत तो क्या चीज है। अगला गीत बॉबी फिल्म से लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

वाह क्या बात है, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार। अगला गीत धड़कन फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं। संगीत है नदीम श्रवण का।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
1: श्रोताओं एक आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें हैं राम लक्ष्मण का संगीत है

गीत के साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आज मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त चंचल। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 11:10 होने ही वाले हैं। अब हमारी आज हम दिल्ली केंद्र से अब जुड़ते हैं। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक।

0: को समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
0: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की